अभी आप FM 100 से सुन रहे थे तिलावत कुरान पाक, तिलावत कारी वही जफर कासमी, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, आवाज़ शमशाद अली खान की थी।

0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Assalamu alaikum Pakistan.

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
1: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
2: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
4: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
5: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
6: 365.

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू हुंडई पैलेसेड हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
2: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीनों की पाबंदी कीजिए.
4: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: सोशल मीडिया सार्फिन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीने रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काफी सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: Emergency कभी बता कर नहीं आती.
2: चंदा एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर एम 210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शराइतों से वाबित लागू है.
4: 11.99%
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
9: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है. HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
10: HBL जरई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
12: शराइत ज़वाबित लागू है.
13: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 900 का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें. मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
9: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है. HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
10: HBL जरई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
12: शराइत ज़वाबित लागू है.
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
15: शौकत खानम कराची की तकदीर.
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
17: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
18: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
19: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
20: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
19: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
20: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
19: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
20: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
19: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
20: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
21: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: शौकतानम कराची की तकलीफ
13: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
22: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
13: एंड
23: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
13: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी एचपी और ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
24: FM 100
25: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
24: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।

0: सॉरी सॉरी सॉरी मिराल, मुझको थोड़ी देर हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। हमारे घर धोबी आया हुआ था।
0: अरे हमारे घर भी धोबी आया था थोड़ी देर पहले।
1: ओह, मुझे लगता है हमारे घर एक ही धोबी आता है।
0: मीराल, तुम्हारे धोबी का नाम क्या है?
1: बाबू भाई।
0: अरे हमारे घर भी बाबू भाई आते हैं। सेम सेम।
1: हम जब से धोबी धोबी कर रहे हैं, आपको पता है धोबी कौन होता है?
0: धोबी घर से कपड़े लेके जाता है, उनको धोता है, साफ करता है और इस्त्री करके वापस लाता है।
1: धोबी का गाना सुनेंगे आप?

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 11.99%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM।
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
11: शराइत और ज़वाबित लागू है।
12: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
13: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
14: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
14: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
13: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन।
14: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
13: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
15: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneef
0: and
16: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
17: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
0: and
16: Tabal Family Mixture laye, Umrah par jaye
0: and
3: purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo, kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे पास आप लोगों के मैसेजेस आएंगे। आज का टॉपिक जो है मेरे दिल के बड़े करीब है और वो ये है कि सबसे बुरी जॉब आपने जिंदगी में कौन सी की है। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनको कभी ऐसा जो है ना मौका मिलता ही नहीं है कि वो गंदी जॉब करे, लेकिन कुछ लोग इतने लकी होते ही नहीं है और वो जो है ना उनको एक के बाद एक बहुत ही कोई गंदी जॉब्स मिल रही होती हैं। और असल में जॉब कोई भी गंदी नहीं होती, इंसान असल में अगर आपका जो है ना बॉस अच्छा है ना बॉस, तो बस बंदा काफी चीजें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आपका बॉस ही नहीं अच्छा तो फिर बंदा क्या करे, फिर मतलब कुछ भी बंदा जो है वो नहीं कर सकता। ठीक ठाक कोई मसले हैं यहाँ पे। एनीवेज तो खैर आप लोग जो है मुझे मैसेज करें और बताएं कि क्या सीन है, आपकी सबसे गंदी जॉब कौन सी थी। मैसेज करने का तरीका आपको पता है कि मतलब यू नो अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर। और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सैयद उमेर का मैसेज आया हुआ, कैसे आप? और फातिमा उमेर एंड पापा, हेलो फातिमा एंड पापा, एंड प्रे फॉर रेन एंड हेल्दी वेदर टुडे, अल्लाह करे बारिश हो जाए। सुना तो है कहीं कहीं बारिश का इंतजार है, इतनी शदीद गर्मी होगी सितंबर में कुछ हाल नहीं है, क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है या कराची बस ऐसे ही है। और हेलो कैसे आप, एनजी का भी मैसेज आ गया है वो कह रहे थे कि लास्ट जॉब जो थी वो बहुत खराब थी जी हुजूरी वाली, कौन सी जॉब थी ये भी बता दे, आज बता दो। मैं तो कहती हूँ आज तो बॉसेस का नाम ले के बता दो, क्या टेंशन है आपको कौन पकड़ेगा, तो मैं तो हूं ना यहाँ पे तो टेंशन ही नहीं, बता दें आज। और इसके अलावा जो है उस्मान हफीज का भी मैसेज आया हुआ है, उस्मान हफीज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो अल्लाह का शुक्र स्टार्ट से ही प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं, वैसे भी मैं किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करता था। सही बात है, आजादी मुबारक हो आपको है, और गुलामी वैसे कहीं भी नहीं चाहिए किसी की लेकिन प्रॉपर्टी के काम के लिए आप इतने सुबह सुबह जा रहे हैं, लोग तो पता नहीं आराम से उठ के जा रहे होते जिनका अपना काम होता है प्रॉपर्टी का, है ना? नहीं तो खैर। और तो अभी जो है ना अभी हम आपके लिए कोई अच्छा सा गाना हम ढूंढ रहे हैं, वैसे अल्लाह करी मिल जाए गाना मुझे। उस सुबह सुबह ना मुझे इंग्लिश गाना सुनना होता है थोड़ा, और ताकि जो है ना मैं एनर्जाइज हो जाऊं और थोड़ा बहुत डांस भी कर लूं। यहाँ लोग मुझे समझ रहे होते हैं ये जो है ना थोड़ी पागल है, लेकिन अब इनको आदत हो गई है। सो फनी लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक। और आप लोग मुझे मैसेज करेंगे आज समिया के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पर, आपने बताना है कि आपकी लाइफ की सबसे गंदी बेकार बुरी जॉब कौन सी थी, और अपने बॉसेस को भी अगर आप बुरा भला बोलने वाले हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, आज कर दो दिल की बातें। सो अभी मैं प्ले कर रही हूं आप लोगों के लिए ट्रैक, आइए सुनते हैं।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मुझे कहते हैं आरजे समीहा और आप लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं. आज हमारा टॉपिक ये है कि आपकी जिंदगी की सबसे गंदी बेकार वर्स्ट जॉब कौन सी थी. और इंसान कभी भी नहीं भूलता शायद अपनी बुरी तरीन जॉब भी और सबसे अच्छी जॉब भी. और मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि एक के बाद एक टाइम था मेरा कि आई यूज़ टू रन अवे फ्रॉम वन जॉब टू द अदर. एंड उसमें लगा था कि एक बॉस को छोड़ के दूसरे बॉस की तरफ गए तो मुझे लगा कि वो मयारे बॉसेस गिरता जा रहा है. फिर मैंने कहा छोड़ो, नौकरी नहीं है मेरे बस की बात, अपना ही काम करते हैं. अभी तक मैं सोचूं कि अपना काम क्या करूं. खैर, और सैयद उमेर कहने लगा, शुक्र है ऑलवेज लकी टू हैव गुड ह्यूमन एज बॉस विच बिकम्स लाइफ लॉन्ग फ्रेंड आफ्टर जॉब स्विच. बड़ी अच्छी बात है. खैर, मेरी एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे बॉस मीडिया में थी मैं और वो मेरे मतलब सुपरवाइजर थे और मैं वाकई में उनके अभी तक वो हूं. अगर अच्छा बॉस हो उसके साथ जिंदगी कितनी आसान हो जाती है. आप उसे बात कर सकते हैं, आप आराम से छुट्टी ले सकते हैं. सिर्फ आपको काइंड होने की जरूरत है. ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है बेतकल्लुफ हो जाएं. हर वक्त जाहिर है बॉस को भी डेकोरेटिव मेंटेन करना पड़ता है. लेकिन जो बॉसेज है ना, अब अजीब और गरीब नमूने टाइप बॉसेज जो मैं आपको बता रही हूं, ऐसे ऐसे नमूने टाइप बॉसेज हैं. और लड़कियों के लिए तो और भी मसले होते हैं यहां पे कि या तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए. अच्छा, लड़कियों को ना ज्यादा सख्ती भी नहीं पसंद होती और ज्यादा उनको जो है ना वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडलीनेस भी नहीं पसंद होती. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीड सक्सेसफुली अ टीम विद हैव लॉट्स ऑफ गर्ल्स. लेकिन लड़कियां लॉयल होती हैं, वो नहीं चाहती बार बार जॉब स्विच करना. हो जाती एक जगह हो गया आराम से, अगर उनकी सेटिंग बन जाती है तो सालों वो लड़कियां एक ही जगह पे काम करना चाहती होती हैं. लेकिन और वो उनकी जो जॉब है वो उनकी सेकंड फैमिली बन जाती है. लेकिन अगर वो सेफ फील नहीं करती और टेंशन में रहती हैं तो फिर वो एक मिनट भी नहीं लगाती वर्कआउट करने में है. और इसके अलावा आबिद मीर, आई एम श्योर कि आपके पास कुछ ना कुछ कहने को होगा इस टाइम पे. कह रहे हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ किसी ने सोच समझ के नाम रखा होगा इसका नौकरी. हाँ, जॉब बोलने में थोड़ा मुनासिब लगता है लेकिन अपनी मर्जी से अपने बिजनेस में ही चलती है, छोटा सा ही क्यों ना हो. और हर सीनियर को लगता है उन्हें गुस्सा करने के पैसे मिलते हैं, जूनियर को छोटा सा सही पर अपना रोजगार होना चाहिए. अच्छा, तुम तस्वीर भी भेजिए अच्छी खाने की. नहीं, मैं बता रही हूँ कि वाकई में अपना बिजनेस भले छोटा हो, एक दुकान हो, वो बेहतर होता है नौकरी से. बिजनेस से आप बहुत सारे लोगों की मतलब बहुत सारे नहीं, कम से कम दो या तीन अगर आप एम्प्लॉयज रखते हैं तो फिर मतलब आप लोगों का रिस्क में उनका हिस्सेदार बन जाते हैं. लेकिन साथ में ये भी है कि जब इंसान के खुद पावर आता है ना हाथ में और बॉस बन जाता है तो वो भी एक जालिम बॉस बन सकता है. ऐसी बात नहीं है कि आपको लगे कि ओह मैं तो ऐसा वैसा बॉस नहीं बनूंगा, मैं तो बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत मतलब मिलनसार किस्म का बॉस बनूंगा. तो ये होता है लेकिन असली में जो है वो मतलब जिंदगी जो है जब जरा सा पावर भी मिल जाए किसी को तो लोग फिरौन बन जाते हैं. ये है एनीवेज. तो खैर, आप लोगों के मैसेजेस का मुझे इंतजार है. आप बताएं कि आपकी सबसे वर्स्ट जॉब कौन सी है और किसमें आप इंसान आपको क्या लगता है सबसे वर्स्ट जॉब कौन सी हो सकती है. मुझे लगता है वेटर्स की जॉब भी बड़ी मुश्किल है लिटरली, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान होता कराची के अंदर जहां कोई हंसता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सब फेक स्माइल कर रहे होते हैं. हाँ जी जी, आप आइए आइए, अंदर से गालियां दे रहे होते हैं, आ गए ये लोग और बस मतलब लिटरली. और फिर अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई मैनेजर वेटर्स को सबके सामने डांट दे तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक. लेकिन हर इंसान को एक दफा वेटर का काम जरूर करना चाहिए बिकॉज अब बाहर अगर आप जाते हैं और रेज्यूमे मैंने देखा था अपने कोलीग का, क्लास फेलो का, उसके रेज्यूमे पहली जॉब उसने लिखी हुई थी वेटर की, ही वर्क्ड एज अ वेटर. और मैंने कहा अपने रेज्यूमे में कौन लिखता है कि यार मेरी पहली जॉब वेटर है. तो मैं खास उसकी 16 ईयर्स की एज में वो जॉब थी एज अ वेटर. और वहां पर बातें बड़ा फखर करते हैं कि हमने 16 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया और हमारी पहली जॉब वेटर है. तो बच्चों के अंदर वो जो गुरूर और अना, खासतौर पर जो अमीर घर के बच्चे होते हैं जो जिंदगी में 25 साल की उम्र तक कभी काम नहीं करते, तो वो फिर मतलब उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो सीखते हैं पैसे की वैल्यू, खासतौर पर मेहनत की वैल्यू. क्योंकि वेटर बनना बहुत ही मेहनत का काम है, बर्दाश्त का काम है. तो मुझे लगता है जिंदगी में एक दफा वेटर जरूर बनना चाहिए. और मैंने जॉब की नहीं कोशिश की लेकिन खैर मेरे अलग मसले हैं. मैंने कहा था अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगी, इतनी मुश्किल से तो आजाद हो गई, आजाद होकर हम आए. लेकिन वाकई में यू शुड वर्क ताकि आपको दूसरों की तकलीफ का अंदाजा हो और आप कभी उनके साथ कभी बुरा सलूक ना करें. एनीवेज, तो खैर अभी हम आप चलते हैं एक गाने की तरफ. जो टाइम तो खैर बड़ा कम हुआ लेकिन
کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے نا یہ مطلب گانا بڑا پسند ہے, یہ سنگر ہی بڑا پسند ہے. اور میں تو کہتی ہوں نوکری چھوڑو کام چھوڑو بلکہ بس مستی رہو, یہ سنتے ہیں.

0: जी आप असरार की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रहे थे और गाने के बीच में सॉरी मुझे बोलना पड़ा है लेकिन हमारे पास ये मैसेज है जो जरूरी है आपको पहुंचाना HBL फ्रीडम अकाउंट की जानिब से और बिजनेस छोटा हो या बड़ा बैंकिंग होनी चाहिए आसान HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाए मजीद सहल और तेज अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर अब पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सिर्फ HBL फ्रीडम अकाउंट में तो ये मैसेज था हमारा HBL फ्रीडम अकाउंट की जानिब से आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा आज हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि आपकी जिंदगी की सबसे गंदी बुरी जॉब कौन सी थी और हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: Chandra Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
5: Control for M210210 move karenge.
3: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे समीहा। आज हम बात कर रहे हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, कितने मतलब आपको जो है अपनी कौन सी नौकरी जो है वो सबसे गंदी आपको लगी, और कुछ जॉब्स हैं जो बहुत ज्यादा टफ हैं, आम जॉब से ज्यादा टफ हैं, तो उनकी भी बड़ी कदर और इज्जत करनी चाहिए। अंजीक कह रहे हैं कि बॉस इज योर इंटरनल क्लाइंट एंड यू शुड नो हाउ टू डील विद कस्टमर्स इंटरनल और एक्सटर्नल, नॉट सेइंग फॉर बटरिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट, वी लर्न एज पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट वर्क विद समबडी खासतौर पर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इफ आई डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन। मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ वो मैं उसकी इज्जत करूँ एज अ पर्सन, एज अ वर्कर, कि वो कैसा काम एज अ समबडी, और लड़कियों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। मुझे लगता है कि लड़कियों को वाकई में बहुत आम बंदे से ज्यादा रिस्पेक्ट की बात होती है। अगर आप लड़के को बोलेंगे अबे इधर जाओ, या थोड़ा गुस्से से ऊंची आवाज में बात करेंगे किसी आदमी से, तो वो शायद इतना माइंड ना करे। लेकिन लड़की से अगर आपने ऊंची आवाज में बात की या थोड़ी सी बदतमीजी की, तो फिर वो बहुत माइंड कर देती है, वो फिर आपकी सारी चीजों को भूल जाती है। लड़कियों का दिल भी ऐसा है, एक दफा अगर लड़की का दिल खराब हो जाए तो फिर आप सोने के भी बनकर आ जाए, फिर बड़ा मुश्किल है उसके दिल को वो इम्प्रेस करना। उस हिसाब से मुझे एक होस्टेसेस की जॉब बहुत ही टफ लगती है। एंड जब मैं आई वॉज ट्रेवलिंग फ्लाई जना लास्ट ईयर, एंड तो फ्लाई जना के अंदर बड़ी प्यारी प्यारी वो टर्किश भी होती हैं एयर होस्टेसेस, तो हमारे जो मर्द हजरात हैं वो ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे कि पता नहीं कभी लड़की उन्हें देखी नहीं। इट इज रियली एम्बैरेसिंग, क्योंकि लगेगा कि पता नहीं कौन लोग हैं जहाज पर फर्स्ट टाइम बैठे हैं क्या है। और वो लड़कियां इतनी यूज टू हो गई होती हैं कि ये तो वो लोग मुझे हमें देखेंगे ही, और बड़ा मुश्किल है। मैं कह यार ओ माय गॉड टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन सर्ट ऑफ सच पीपल, वो जो बिल्कुल ऐसा था ऐसे देखते हैं यहाँ के लोग लड़कियों को, होस्टेस को खासतौर पर घर तक छोड़कर आएंगे और फजूल फजूल की चीजें वो मंगा रहे होते हैं। अच्छा अच्छी बात है उन्होंने स्टीवर्ड भी रखा होता है, वो स्टीवर्ड तो एक्चुअली उनका था, वैसे वो भी बड़ा प्यारा था जो सच्ची बात है, लेकिन वो डांट रहा था, कहता वो कहता भाई सीट अंदर करें यहाँ वो चीजें यहाँ कैसे गिरा, तो उसका एटीट्यूड ऐसा था कि वाकई में डांट रहा था लोगों को। लेकिन इट इज अ वेरी वेरी टफ जॉब एयर होस्टेस से, प्लीज आप लोग जब भी जाएं एयर होस्टेस या इवन एयरपोर्ट्स के अंदर, बहुत मुश्किल काम है और आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, और वो हेक्टिक और मुश्किल काम है, आप हमेशा उनके साथ पोलाइटली बात करें, और आना जाना ना जाने कैसे से लोगों को बर्दाश्त करना, इतने इतने घंटे फ्लाइंग करना, कभी कभी कोई खास गैप भी नहीं होता। So you should always respect people who are, you know, flying, whether male or female or sab. तो ये और मेरे ख्याल से अगर एयर होस्टेस खूबसूरत हो तो बीवियों को बड़ी टेंशन हो जाती है कि शौहर वहां वहीं तो देखा नहीं जा रहा, बार बार उनकी सारी जो है ना सारा फोकस ना उस पर होता है अपने शौहर के ऊपर कि ये कितना देख रहा है लड़की को, है कितना। और फिर मैं सोचूं कि पैलेस की वाइफ कितनी टेंशन में रहती होंगी, हैं खूबसूरत एयर होस्टेस, हाँ तो बेचारी तस्बीह पढ़ती रहूंगी अल्लाह मेरा शौहर आ जाए वापस, और जो है ना दूसरी बीवी को लाए बगैर, ये भी उनका कंसर्न्स होते हैं। तो कुछ जॉब जो है वो बल्कि बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन खैर आई एम श्योर कि ट्रैवल में, एयर ट्रैवल में स्पेशली पैसा पैसा पैसा जो है वो बड़ा ठीक ठाक मिलता है। तो खैर ये हमारी बातें चल रही हैं, और आबिद अमीर भी कुछ कह रहे हैं। आबिद अमीर जो है अपनी दुख की दास्तानें शेयर कर रहे हैं। आबिद अमीर कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव पर जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, मुझे लगता है पेट्रोल पंप वाली नौकरी, कॉल सेंटर वाली नौकरी बिल्कुल इज्जत नहीं करवाती। जो पेट्रोल भरवाने आ रहा है महंगे पेट्रोल का, कौन कौन से ताने लाता है, और कॉल सेंटर पे कितनी जली कड़ी सुननी पड़ती है, क्योंकि कोई भी तारीफ के लिए फोन नहीं करता, उनके लिए कुछ सॉन्ग प्ले कर दें। हाँ जी बिल्कुल, हम सॉन्ग प्ले कर दें। पेट्रोल से मुझे याद आया कि एक दोबारा बढ़ा दिया, मैं तो कह रही हूँ पैदल आ जाए सब लोग, बॉसेस को बोलेंगे सर अब इतना ना हो पाएगा हमसे, 380 हो गया है पेट्रोल। मतलब कोई शर्म भी नहीं आती कि पेट्रोल बढ़ा रहे हैं यार। मतलब अच्छा पहले होता था कि चलो हफ्ते में एक दफा बढ़ रहा है, महीने में 15 दिन के बाद जी, अब तो रोजाना ही बढ़ा जा रहा है। मतलब पागल, लिटरली सीरियसली, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, तो फिर उनको छोड़ने आना ले जाना है मैं कितनी फीस है। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यार इस मुल्क में तो बंदा ना, खासकर कराची के अंदर दो बच्चे ही अच्छे। खैर तो एनी यहाँ क्या लाएंगे बच्चों को दिखाने के लिए, क्या है इस शहर के अंदर, क्या है हाथी, तो आप कभी मारे हो बेचारी हाथी की भी न्यूज आई हुई है। हाथी का नाम है मधुबाला। पहली बात है आपने इंडियन एक्ट्रेस पे हाथी का नाम क्यों रखा है, व्हाट शी हाथी हैज टू डू विद मधुबाला, हाथी कहाँ मधुबाला कहाँ है, उसको बीमार हो गई है मधुबाला। मतलब एक बेचारी हाथी का भी हम ख्याल नहीं रख सकते इस शहर के अंदर है, हालांकि आई लव हाथी, मतलब मेरा बस चलता में एक हाथी एडॉप्ट करती, लेकिन खैर अब क्या हाथी है, हाथी पे हम तो यहाँ हाथी भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
ہاتھی کیا ہاتھی کا بچہ, کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہم, جانور کو بھی نہیں رکھ سکتے. خیر آپ ٹینشن نہ لیں, آپ لوگ یہ گانا سنیں, اس میں وہ اپنے باسز کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہے یہ آدمی, تو آئیے سنتا ہے.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
3: कंट्रोल फ्रेम 210-210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शराइत और ज़वाबित लागू है.
4: 11.99% 100 FM
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
9: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
11: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
10: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
11: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया. ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
12: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
7: शराइत ज़वाबित लागू है.
4: 100 FM
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
14: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
15: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
16: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
17: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
18: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
19: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
20: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
19: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है. और स्पेस भी काफी है.
20: एग्जैक्टली. Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-seater विद 3 यूजेबल रोज, कैप्टन सीट्स एंड अ ड्यूल पेन सनरूफ फॉर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस.
19: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
20: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
19: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
20: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
21: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
16: शौकत खानम कराची की तकलीफ
22: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
23: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
22: एंड
24: टबाल फैमिली मिक्सचर लाए उमराह पर जाएं
22: एंड
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
25: fm247365.
26: Let's celebrate
27: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
25: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: राइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. और आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी सबसे जिंदगी की वर्स्ट जॉब कौन सी थी, जो आपको अगर बॉस को कुछ कहना है दिल से बुरा भला तो आप जो है वो बना सकते हैं. एनीवेज मैं आपको बताऊंगी एक कूल जॉब है जिसमें मैप गूगल मैप वाली जो खातून है जिनके हम सुनते हैं कि प्लीज टर्न लेफ्ट और योर डेस्टिनेशन इज ऑन योर राइट, तो ये सब जो बोल रही होते हैं आपके जीपीएस के अंदर, उस खातून का नाम है कैरन जैकबसन और वो ऑस्ट्रेलियन सिंगर और वॉइस एक्ट्रेस है. और मैं चाहती हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर उर्दू में भी आए. सोचें अगर पाकिस्तान के अंदर उर्दू में आए या पंजाबी या सिंधी में आए तो कितने मजे की बातें होंगी. कि सिंधी में तो ऐसे होगा सीधो वंज या कुपति वंज हल हल चलो चलो हल हल, और पंजाबी में होता है कि जी सज्जे हाथ खब्बे हाथ और परे और पेट्रोल की कीमत हो तुमने मैं तुमसे बोल के भर वो हो गई. किस कब से कह रही हूं कि पेट्रोल डलवा लो. सोचो गाड़ी के अंदर से आवाजें आ रही हूं, कब से कह रही हूं कि पेट्रोल डलवा लो. अब हो गया ना महंगा. और उर्दू गूगल कितना तमीज का होता कि जी आपको इतला दी जाती है कि सामने एक भैंस तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश कीजिए कि बराए मेहरबानी रस्ते से हट जाए, शुक्रिया. तो गूगल मैप भी अगर उर्दू में होता तो आई एम श्योर के बड़ा कोई मजेदार सीन होता, राइट. तो खैर ये बातें हमारी चली, आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं. और राजपूत, आपका नाम चौहान राजपूत है कि राजपूत चौहान है, लेकिन खैर आप बहुत अच्छी बातें करती हैं और मैं आपको बहुत सुनता हूं, एनर्जी है आपकी बातों में, यू आर सुपर. बिल्कुल सही बात है. मुझे लगता है कि वाकई में उर्दू गूगल पे काफी ज्यादा हम काम कर सकते हैं. फिलहाल जी जो कॉल अगर आप मिलाते हैं लोगों को, जब आप फोन मिलाते हैं तो इंतहाई दुखी आवाजें क्यों रिकॉर्ड की जा रही है. ठीक है, मान लिया यार व्हाट्सएप आपका एक लेजिटिमेट नंबर पे होना चाहिए, इसमें इतने दुख की क्या बात है, वो भी हो सकती है. सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना नंबर जो है ना वो वेरीफाई करवा लें. अगर आपका नंबर वेरीफाइड नहीं होगा ना तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी ना बंद हो जाएगा. मानेंगे ना हमारी बात. अब वो इतने प्यार से बोलती तो हम तो जरूर मान जाते, लेकिन नहीं, वो इतनी दुखी ऐसा लगता आप किसी को फोन कर रहे हैं दुख में आ गए. प्लीज अपना अकाउंट ये करवा लें वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा. फोन कर रहे हैं यार किसी को और मजीद दुख वो कर रहे हैं. ठीक है, तो खैर अभी हमारी बातें जा रही हो सारी हैं. और मैंने मुझे पंजाबी, वैसे पंजाबी गूगल मैप का मैं बड़े इंतजार करूंगी. इसी बात पे जो है मैंने आप लोगों के लिए एक पंजाबी गाना, इसमें बता रहे हैं कि इंग्लिश अगर सिखाई जाए पंजाबी लोगों को तो उनका एक्सेंट कैसे होगा. तो आइए सुनते हैं क्लासिक पाकिस्तानी टाइम में ये स्केट.

0: नाजरीन, आइए हम आपको पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं जो अंग्रेजी जबान में तैयार की गई है। आने वाले जमानों के लिए संग मील साबित होने वाला शाहकार, जिसके तमाम अदाकारों ने अंग्रेज माहरीन की जेर निगरानी 6 माह का एक खसूसी तरबियती कोर्स मुकम्मल किया। पेंडू प्रोडक्शंस की रंगीन अंग्रेजी फिल्म बशीरा इन ट्रबल।
1: टच मी नॉट बशीरिया,
2: शेरिया, टेल मी अबाउट माय रण।
1: सपोज आई डोंट टेल यू देन,
2: और फिर यू डोंट कॉल यूर डेथ कावड़ा।
0: रोमांस
3: बर्ड्स एंड पैसेंजर्स, बर्ड्स एंड पैसेंजर्स।
4: राणो,
3: व्हाट वे?
4: लिसन राणो,
3: वे व्हाट वे?
4: आई प्रॉमिस यू राणो, आई विल कम बैक सून राणो।
3: पंछी ते परदेसी, आई मीन बर्ड्स एंड पैसेंजर्स आर नेवर बैक। यू आर अ ग्रेट लायर, आई डोंट बिलीव यू।
4: की पई स्पीक नहीं है राणो, जस्ट यू शट अप।
3: वे तू आप शट अप वे।
0: ड्रामा।
5: डियर बॉय, शैल आई स्टार्ट द निकाह? यस यू मे।
6: स्टॉप इट काजी साहब।
5: मिस्टर चौधरी, व्हाट हैपेंड?
6: दिस मैरिज इज नॉट पॉसिबल, द जज विल गो बैक।
7: स्टॉप, लैंडलॉर्ड सर, फॉर गॉड सेक, लुक एट माई पग, माई प्रेसेज इज अंडर यूर
6: Shut up, boy! Come with me!
7: Ready!
0: Unforgettable melodies,

वेलकम बैक टू आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, मैं हूं आपकी दोस्त अजय समी। आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी की सबसे गंदी बेकार जॉब कौन सी थी। और मैं तो तफसीलन एक्चुअली मैंने अपने लिए किया है शो, क्योंकि इतने गंदे गंदे बॉस है और मैं बता रही हूँ कि एक के बाद एक गंदे, एक को मसले होते थे कि एक को खुद कुछ आता नहीं था मगर क्रेडिट खुद लेना चाह रहे थे। ऑफकोर्स उनका ताल्लुक सरकारी नौकरी थी, वो तो वो उनको कुछ भी नहीं आता था, बस सिफारिश से वो आ गए थे। चलो ठीक है, आप सिफारिश से आ ही गए हो तो काम सीख लो ना, या जो आप काम करके दे रहे हैं उसको थोड़ा बहुत तो क्रेडिट दे दो। लेकिन नहीं, वो खुद क्रेडिट ले लेते थे। एक ईमेल जो है ना वो लिखवाने के लिए 10-10 लोगों के पास मिन्नतें करते थे कि ईमेल कर दो। ऐसे मैंने लोग देखे हैं। और फिर बॉस के पास अच्छा मेरा होता था, आई एम नेवर इंटीमिडेटेड बाय लाइक द हायरस्ट अथॉरिटी, मगर मुझे लगता है कि जॉब के अंदर हायरार्की को मानना पड़ता है। जो आपका सुपरवाइजर होता है ना वही आपका बॉस हो, ऊपर का बॉस भले कितना भी अच्छा हो, अगर आपका सुपरवाइजर जहर है तो फिर जहर ही है सब कुछ। लेकिन ऊपर का बॉस गंदा भी हो लेकिन आपका सुपरवाइजर अच्छा है तो थोड़ी बहुत जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। तो खैर अजीब तरीके के नमूने बॉसेस हैं। सेठ कल्चर, आप एमबीए करके जाएं या आपकी एमफिल करके जाएं, अगर आप ऐसी इदारे में काम कर रहे हैं जहां पे सेठ कल्चर है तो वहां ये सारी चीजें जो है वो काम नहीं करती। जो पढ़कर आए होते हैं वहां सिर्फ एक चीज काम करती है, सलाम सेठ, सेठ सलाम। और एक चैनल के मालिक थे जहां मैंने काम किया, तो वो उनका नया नया चैनल शुरू हुआ था, तो जब वो आते थे तो वो 4 बजे तो महसूफ तशरीफ लेकर आते थे, दो दो गाड़ियों में, दो दो लैंड क्रूजर्स में आते थे। एक लैंड क्रूजर में सिर्फ उनके गार्ड्स होते थे, उसके पीछे मोबाइल भी होती थी। हालांकि मुझे वो कहीं से कभी भी इंपॉर्टेंट या जरूरी इंसान नहीं लगे, लेकिन खैर पैसा आया तो सिक्योरिटी मिलेगी। मुझे समझ में आया कौन उनको किडनैप करना चाहेगा। खैर वो जब आते थे तो पूरा सब कुछ ब्लॉक हो जाता था, दरवाजे बंद हो जाते थे, गलती से भी कोई एम्प्लॉई उनसे बात ना कर ले और अपना रोना ना रो दे तो उन्हें ऐसा एनवायरमेंट बना के गार्ड्स में कि कौन है भाई, सेलिब्रिटी है, कौन है, बॉस ही तो है। मैंने ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा। और ऑफकोर्स वो चैनल आज बहुत ही बुरे हालात में है, तो मुझे हैरत भी नहीं होती वो बुरे हालात देख के उस चैनल के, क्योंकि जिस तरीके का बॉस होता है ना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कहते हैं विजन कम्स फ्रॉम द लीडर। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान का ही हाल देखें, अभी तक यहां से लीडरशिप का ही रोना है। लीडर अच्छे होते तो पूरी दुनिया में हमारी कदर और पहचान होती, हमारे आज तक कोई मिल ही नहीं पाए हमें। खैर कहते हैं ना जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो हम कौन सा बड़े लाइक फाइक चल रहे, ऐसे ही लोग मिलेंगे। और खैर आप लोग के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। अहमद शकील कह रहे हैं ट्रैवल एजेंट की जॉब बहुत टफ है। अच्छा ट्रैवल एजेंट की जॉब टफ होती है? हाँ यहाँ हो सकता है, लोग आखिरी टाइम पे बता रहे हैं देखो मुझे ना आधे घंटे के बाद वाली फ्लाइट दिलवा दो, ऐसे भी लोगों की फरमाइशें होती हैं। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बोलती रहा करें। और मेरे घर वाले कहते हैं खुदा के लिए चुप हो जाओ, रेडियो खत्म हो गया है। तो मैं आके बस यही बातें कर रही होती हूँ, घर वाले तो बिल्कुल नहीं पूछते, वो कहते हैं बेटा बस चुप हो जाओ तुम तो। और एक दफा मेरी अम्मी और मेरी टाइमिंग भी मैच नहीं करती, अगर मैं रात को शो करती तो शायद वो सुन लेती। और नसीम पटेल जी कह रही है गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक नसीम पटेल जी, आपको अच्छा लगा गाना है? मुझे पता था कि आपको जरूर अच्छा लगेगा, और इकबाल हुसैन को भी अच्छा लगा। और अब्दुल रऊफ साहब ने तस्वीर भेज दी कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने तस्वीर अपने कैब की, वैसे अच्छी कैब दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। आई एम सो मच इन टू कैब्स एंड सनग्लासेस, आई थिंक दे आर वेरी कूल। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है खुदा के लिए मधुबाला को ले जाए। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि कराची के जू में जो हाथी है उसका नाम है मधुबाला, तो मधुबाला को ले जाए, रेस्क्यू कर ले क्योंकि उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा है। और अल्लाह सेहत दे, आई लव एलिफेंट्स, आई डोंट नो, एलिफेंट इज माय फेवरेट एनिमल, आई होप कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। यहां तो इंसानों को कोई नहीं पूछता है, तो इंसान मर रहे होते हैं बेचारे, जानवर को क्यों पता, फिर भी लोगों को बस। और आप तमीर हर बात को दिल पे क्यों ले लेते हैं, हो चुके बच्चे अब क्या करें। मैं अभी जो फ्यूचर में लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 पाकिस्तान में लाने की, तो मैं उनसे यही गुजारिश कर सकती हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान में ज्यादा बच्चे को लाने का फायदा नहीं है। जो ऑलरेडी लोग दुखी हैं उन मजीद दुखी बचाएंगे। अब जो हो गया तो हो गया, अल्लाह की मर्जी, अब उनको आपका दिल पर ले लेते हैं। एनीवेज तो आप लोग मुझे मैसेज करें, टाइम रह गया बहुत कम क्योंकि मैं जल्दी साइन आउट करने वाली हूं, तो हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। आपने हमें यह बताना है कि आपकी लाइफ की सबसे गंदी जॉब कौन सी थी, और आपको क्या लगता है कि सबसे टफ जॉब्स कौन सी हैं। और हम आपके लिए वाइटल साइंस का, ये हमारा वाइटल साइंस जुनेद जमशेद का टाइम होता है, और ये हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे लिसनर्स एनजीक को भी, और शहरयार को भी, अली रजा को भी, एंड नसीन जी आपको भी, हकीम शकील साहब आपको भी।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शरायतों से वाबित लागू है.
5: 11.99%
8: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है. ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ. रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा. वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें. पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें. टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो. याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है. अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें. मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें. वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 11.99%, 11.99%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: This program is brought to you by
6: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM247365
7: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
8: connecting,
7: holding you,
8: holding
7: with FM 100.
9: FM 100. FM 100.

0: AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
3: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
10: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
11: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा

0: AM. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
5: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
6: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
6: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: It's 24 hours non-stop vibration. Connecting you.
9: Connecting.
8: Holding you.
9: Holding.
8: With FM 100.
10: FM 100.
11: FM 100.

0: 11:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तैद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247365.
6: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
7: connecting,
6: holding you,
7: holding
6: with FM 100.
8: FM 100. FM 100.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
4: कंट्रोल फ्रेम 210-210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: This program is brought to you by
5: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
6: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 fm247365.
7: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
8: connecting,
7: holding you,
8: holding
7: with FM 100.
9: FM 100.
10: FM 100.

100.

Yes everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि आपको तरीका एक कार बताएंगे कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो इसके लिए करना कुछ यूं है, आपने कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे. तो इस तरीके कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने हाल हवाल बता सकते हैं कि आप सबका जो दिन है वो कैसा गुजर रहा है. गर्मी से भरपूर दिन जो है वो हम सबके गुजर रहा है, बिकॉज बहुत गर्मी है इस वक्त कराची में भाई. अभी भी कराची का जो टेम्परेचर है राइट नाउ इट्स 34 एंड रियल फील्स लाइक इट्स 41. तो ये हैं अपडेट्स इस वक्त कराची के मौसम की. और मजीद क्या खबरें हैं सवाले से भी हम आप लोगों तक आगाही फराम करेंगे. आज 15 सितंबर है तो आज कौन कौन से दिनों को मनाया जा रहा है इस हवाले से भी आप तक आगाही फराम की जाएगी. तो जी ये बात तो तय है कि बहुत सारी बातें होंगी आज प्रोग्राम में और इसके लिए हम इंतजार करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से इंतजार. और जो हमारे प्रोग्राम का जो आगाज है वो होता है म्यूजिकल ट्रैक के साथ, तो जी वो भी हो चुका है. तो अब आप हमें 3636 पे मैसेज करें, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. या फिर आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. सो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से आप लोग बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो जी मैंने सोचा है कि जब तक आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, तो जब तक हम क्या करते हैं, हम भी चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानिब और ट्रैक के बाद हम आ जाते हैं वापस. तो चलें जी शामिल करते हैं एक अदर ट्रैक को और इसके बाद हम आते हैं वापस.

Yes, my friends, we are talking to you. गर्मी पर भी बात हो रही है, साथ ही साथ जो है वो हम ये भी बात कर रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है जिंदगानी में. भाई गुस्सा भी आ रहा है लोगों को और क्या क्या चल रहा है और गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि अच्छा जैसी ऐसे ट्रैफिक और ये सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो लोगों के चेहरे आपको तब्दील होते हुए नजर आ जाते हैं, जो कि मुझे नजर आ रहे थे आज. तो मैंने सोचा कि जरा अपने शो में भी बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि क्या इस गर्मी के आते ही आपके भी माथे पर गुस्सा आने लगा है और या नहीं आ रहे. आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं, अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ना कराची का ट्रैफिक भी है जो कि बहुत बहुत ज्यादा टेरेबल है. एक तो गर्मी भी, ऊपर से ट्रैफिक भी, और कराची की सड़कें भी. बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द हम ऐसे कराची को पाएं जहां पर किसी किस्म की रोडें टूटी फूटी नजर न आए. और ये मुझे तो लगता है कि इस दफा बारिश न होना भी अल्लाह पाक का बहुत करम है हम लोगों पर, स्पेशली कराची वालों पर, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त कराची में चल रही है उसमें बारिश न होना भी अल्लाह पाक की कोई बहुत बड़ी हम लोगों पर जो है ना वो रहमत है ये कि बारिश नहीं हुई. क्योंकि अगर बारिश होती तो इस वक्त जो हमारी सड़कों का हाल है और जो सिचुएशन चल रही है उसको शायद टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता. तो शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर, एंड नो डाउट हम कुछ और सोचते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ और सोच रहा होता है जो कि बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है. उस वक्त उस पल के लिए हमें बड़ा बुरा लग रहा होता है कि यार हमने इतनी दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से और ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ. लेकिन जब जो काम हमारा होता है ना, फिर वो हमारी प्लानिंग से 100-200 गुना बहुत अच्छा होता है. तो इसलिए खुदा के फैसले हमेशा बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होते हैं. तो इंतजार किया कीजिए क्योंकि इंतजार करने में कोई मुजायका नहीं है. सिर्फ जल्दबाजी में ना रहें क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन खुदा ताला आपके लिए कुछ और मजीद बेहतर सोच रहा है जो आपके लिए और भी बहुत काम आएगा. तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार किया कीजिए और अच्छा सोचा करें. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव थॉट्स तो आ जाते हैं हमारी जिंदगानी में, लेकिन उन्हें हटाया भी जा सकता है. हम बहुत सारी सोचों में मसरूफ रहते हैं, कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं और इस वजह से हम बड़े महफ हो जाते हैं. लेकिन कूल एंड काम रहें, रिलैक्स रहें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ओवर थिंक ना करें, तो जी आपको मजा आ जाएगा जिंदगानी को जीने का. कभी मेरे कहने पर आप ट्राई तो करें. खैर जी, बातों का सिलसिला जारी है. आप जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाएं 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और मजीद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ मालूमात भी शेयर करेंगे. लेकिन उससे पहले एक ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक.

दिल परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। तो ये बात तो हकीकत है कि भाई जिंदगी बड़ी खूबसूरत और प्यारी चीज है और ये हर हाल में हमें प्यारी है। हम हर सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हर चीज का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर सिचुएशन में जो है वो हम एडजस्ट कर लें। महंगाई बहुत ज्यादा है जो कि इस वक्त एक मुश्किल जरूर है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही है कि जी जैसे तैसे करके गुजारा करें और चीजों को मैनेज करें, जो कि डिफिकल्ट तो जरूर है लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और यही है जिंदगानी का नाम। अच्छा भाई, लुक वर्ल्ड ने हमें ज्वाइन कर लिया, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लवली आरजे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कहां थी कल? आप तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं बन रही हैं भाई, कई दिनों से खैरियत तो है, कहां लापता हो गई थी आप? कहती हैं कि कल हमारी तरफ पूरा दिन गैस नहीं थी, रात को 8 बजे आई थी। ओहो, अच्छा ये मैं सुन रही हूं कि कल परसों, मतलब ये दो दिन जो गुजरे हैं यानी कि कल और परसों वाला दिन, ये गैस के मसाइल रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में ये शिकायतें मौसूल हुई हैं कि गैस नहीं रही है और अब तो गैस इतनी अनप्रेडिक्टेड हो गई है, बिल्कुल कराची की लाइट की तरह कि कभी भी जा सकती है। तो गैस का भी यही सिचुएशन है कि कभी भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है। इस चक्कर में आपकी बहुत सारी माचिस की तीलियां जाया होती हैं, बिकॉज आप चेक कर रहे होते हैं कि जी अभी आएगी तभी आएगी, और उसमें भी अब जैसे हम लाइट में एक अपने अंदाजे लगाते थे ना, बिल्कुल अब गैस में भी हमने वैसे ही अंदाजे लगाना शुरू कर दिए कि अभी नहीं तो कभी तो आएगी ना। तो कल रात इनके यहां भी 8 बजे आई है, सो दिस इज वेरी सैड। कहती हैं आज लंच में मिक्स दाल है, गर्मी इतनी है कि काम करने का दिल नहीं कर रहा। ये तो बात सही है, इस गर्मी में ना तो काम करने का दिल कर रहा है ना तो आराम करने का दिल कर रहा है, बस अजीब सी बेजारी उठ जाती है गर्मी में। कहती हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दें, काश बारिश हो जाए। बिल्कुल भाई, ये तो एक हमारी होप ही है कि ट्रैक ही प्ले कर देते हैं, शायद बारिश हो जाए, तो बिल्कुल हम जरूर करेंगे शामिल। हमें जरीनूर भी मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम, कैसी हैं? बहुत दुआ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, क्योंकि भाई दुआएं जो हैं वो बड़ी कीमती चीज हैं और ये दुआएं जो हैं इससे बहुत सारे जो हैं वो मसले मसाइल हल होते हैं और बहुत सारे काम आपके बड़े बेहतर हो जाते हैं जो कि शायद आपने सोचा नहीं होता। और अक्सर औकात आप बहुत सारी मुश्किलात से भी इन दुआओं की वजह से जो है वो निकल आते हैं। तो आई थिंक ये जो दुआएं हैं ये बेहतरीन तोहफा है, तो इसे जरूर दिया करें। और क्योंकि लोग पढ़ने कहे गए भाई कोई ट्रैक लगा दें बारिश से रिलेटेड, शायद बारिश हो जाए, तो बिल्कुल भाई ऐसा ट्रैक हम जरूर शामिल करते हैं कि शायद ये ट्रैक सुन के बादलों में इतना इंटरेस्ट आ जाए कि वो बरस जाए।

0: बादलों से हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जी आ रहे हो तो बारिश ले आओ। यहां तो मजे की बात यह है कि बादल बारिश वाले होते हैं लेकिन बरसते नहीं है कराची में, तो बादलों से हमारी दरख्वास्त है कि जी आ रहे हैं तो जी बरस जाएं। और कराची में आपका बरसने का इरादा है कि नहीं, इस हवाले से भी हम तक आगाही जरूर फराहम करें ताकि हम अपना माइंड बना लें कि होगी बारिश या नहीं होगी। चलो जी फिलहाल तो हम ब्रेक शामिल करते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: Chandra Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
5: Control for M210210 move karenge.
3: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
7: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिंसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सके। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार है तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: 100 FM।
9: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: पाकिस्तान में बढ़ते फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا, نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے, نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں, اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو, اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneek and
2: Step School se foundation ho strong. Call now at 03111117837.
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

ओके तो आज प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमने आपको ये ट्रैक डेडिकेट किया है कि जी भुला दो वो बातें पुरानी, भुला दो वो यादें पुरानी जो आपको दुख देती हैं, जो आपको दर्द देती हैं यार। और इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप भुला दें उन तमाम चीजों को। बड़ी बेचैन रहते हैं वो लोग जो पुरानी बातों को याद रखते हैं, तो इसीलिए पुरानी बातों को भुला देना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर औकात हम ना आगे वाकई में इसलिए नहीं बढ़ पाते कि वो जो पिछली दफा हुआ था ना उसका बदला जब तक नहीं लेंगे या ये वाली बात जब तक उससे नहीं कहेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे जो है वो इदारों से इसलिए जुड़े हुए होते हैं कि दे हैव टू टेक दैट यू नो रेवेंज के पता करना है ये बोलना है। सो यार ये सारी चीजें नहीं होती, भी प्रैक्टिकल आगे बढ़े, जो हो गया सो हो गया। कोशिश ये करें कि आगे बढ़कर आपने ये काम नहीं करना है या इस तरह नहीं करना है, या कोशिश करें कि चीजें बेहतर से बेहतरीन हो। लड़ झगड़ के रहना, आई मस्ट से एंड आई ऑलवेज से दिस टू यू ऑल कि लड़ झगड़ के रहने का कोई फायदा नहीं है, सुलह सफाई रखें। इख्तलाफात होते हैं, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, और कभी आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती या कभी किसी का कोई काम पसंद नहीं आता, दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। बट द थिंग इज दैट कि कोशिश करें कि चीजें जल्द अज जल्द जो है वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि हम हैं तो इंसान, रोबोट तो नहीं है, और गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन वो गलती ना आपको सिखाती भी बहुत कुछ है। तो इसलिए उस गलती से सीखें और आगे बढ़ें, ना कि उसे अपने जहन पर सवार करके बैठे रहें। या अक्सर औकात हम ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारे लोगों के बहुत से एहसान होते हैं हम पे, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उनकी एक गलती की सजा ना हम उनकी सारी जिंदगी दे रहे होते हैं कि सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि उसने ये एक दफा ये बात कैसे कह दी, और हम इस चक्कर में जो है वो लड़ रहे होते हैं हैं या इख्तलाफात पैदा कर लेते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट वे। तो ये चीजें जो है ना वो आपकी जिंदगी को बड़ा बेचैन कर देती हैं। तो बेहतर ये है कि जी आगे बढ़ो और मिट्टी डालो बाकी सारी चीजों पर। तो भाई आप हमें बताएं कि आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, और मजे मजे के लंचेस का मुझे पता चल रहा है। भाई लुकवर्ल्ड ने हमें पहले बता दिया था कि उनके जो लंच में है वो मिक्स दाल है, और जरीन नूर का भी मैसेज आया है उसे भी शामिल करते हैं। कहती हैं आज खाने में मिक्स सब्जी है और तहरी सैलड चटनी के साथ। वाह भाई वाह, लवाजमात के साथ तो हर खाने का मजा दुबाला हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमें किसने बताया था, रुताबा ने भी अपना लंच हमें बताया था, एंड शी सेज कि इनके लंच में दाल चावल और सैलेड है। अच्छा भी आपने गौर किया होगा कि मेरे लंच में इस वक्त लोग जो है वो यही चीजें बता रहे हैं, किसी के लंच में दाल है, किसी के लंच में सब्जी है। और ये बात ठीक इसलिए है क्योंकि सर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो कुछ भी हैवी खाने का मूड हो ही नहीं रहा है, दिल चाह रहा है कि आप कुछ भी लाइट सा खाएं। तो ठीक है जी, सही है, हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। और जरीनूर कहती हैं कि गैस ने बहुत परेशान किया हुआ है, टाइमिंग की आती है अब वो भी कम कम आती है, क्या करें, सिलेंडर पर ही गुजारा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम गैस के बिल भी दे रहे हैं, सिलेंडर में गैस भी भरवा रहे हैं, और वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। तो यही वाले मसले हैं कि हर जानब सिर्फ महंगाई महंगाई है, और बिल्कुल गैस के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। हम सबको गैस की बहुत जरूरत है क्योंकि खाना पकाना है, बहुत सारी चीजें जो सारे काम आपके चूल्हे पर हो जाते हैं। अब तो गैस आती है तो हमें लग रहा होता है कि पता नहीं क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका है। खैर जी, आप हमें जल्दी से मैसेज करें और बताएं कि आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है, क्या बन रहा है, क्या पक रहा है। आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर या फिर 3636 पर आप हमें मैसेज करें। जब तक हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानेब और आपको सुनाते हैं ये ट्रैक बारी।

राइट जी, हेलो एवरीबॉडी। सो वी आर बैक और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल। और अब जबकि हम वापस आ चुके हैं तो आपको एचबीएल एग्रीकल्चरल बैंकिंग के हवाले से भी कुछ मालूमात फराहम करते चलते हैं। फसल की पैदावार के लिए बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, अपाशी और जमीन की तैयारी के खर्चों के लिए एचबीएल से फाइनेंसिंग हासिल करें। ये रिवॉल्विंग फैसिलिटीज 3 साल तक दस्तियाब हैं और अदायगी फसल की कटाई के मुताबिक की जा सकती है। फसल की तैयारी का वक्त है बीज, खाद, स्प्रे या पानी के लिए एचबीएल एग्रीकल्चरल बैंकिंग की फाइनेंसिंग से अपनी जरूरियात पूरी करें। सो दैट्स रियली नाइस, एचबीएल एग्रीकल्चरल बैंकिंग के साथ।

0: अब ऑल फैमिली रिक्शा के साथ हर सफर खास। उम्रा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
2: FM 247 365

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 4 PM।
2: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
3: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365। FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजाज़। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। कयूमाबाद चौरंगी से बलोच कॉलोनी ब्रिज और वहां से शाहराह फैसल की जानब आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त बढ़ गया है, जबकि जैबुनिसा स्ट्रीट से वो ट्रैफिक जो अब्दुल्ला हारून रोड की जाने जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का ऐसा दबाव है। सिंगर चौरंगी से ग्रुप चौरंगी की जाने जाने वाले ट्रैक पर भी इस पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। वो तमाम लोग जिन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहें ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
1: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
2: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
8: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
9: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837.
11: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई मुमालिक पर पड़ रहा है. ऐसे मुश्किल हालात में वजीरे आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीरे आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ. रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा. वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें. पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें. टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो. याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है. अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें. मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें. वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ.
12: This program is brought to you by
13: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
12: and
14: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
12: and
9: VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
12: and
15: Tabal family mixture laye umrah par jaye.
16: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
17: FM 247365.

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9 फीसद 11.9 फीसद.
3: ओ भाई क्या है ये 11.99 फीसद? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99 फीसद का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है.
2: 11.99 फीसद 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
4: शराइत ज़वाबत लागू है।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
10: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
10: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
9: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the.
10: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
11: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई मुमालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीरे आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीरे आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
12: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
15: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
16: एंड
17: तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं।
18: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
19: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखी।
20: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
21: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सब कुटिया।
18: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
22: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
18: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सत्यभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
23: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
24: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
25: facebook.com/fm247365

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99% 100 FM
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
10: शराइत और ज़वाबित लागू है।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
17: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
18: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
17: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
18: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
17: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
18: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
17: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
18: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
19: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837।
10: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف اسکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے
20: 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
21: This program is brought to you by
22: سر سبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا
23: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
24: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
25: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
26: FM 24/7 365 FM 100
27: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
28: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
29: Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 11.9%, 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: सब मुड़ के देख रहे हैं।
8: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid, grand, bold and hard to miss।
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
8: Exactly, Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience।
9: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
10: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
0: and
12: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
13: Tabal family mixture laye, umrah par jaye
14: on facebook.com/fm247365
15: fm247365

0: 11.9%, 11.9%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99% 100 FM। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शराइत ज़वाबित लागू है।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
14: अल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111-182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
15: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
16: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद, और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
17: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरा आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
18: FM 247365।
19: Let's celebrate
20: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
18: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
21: You're listening to the greatest radio station in the world. Asma ko chu

0: H-I space your text message. Send it to 3636.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%
5: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
7: HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247/365

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: This program is brought to you by
4: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zara yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
5: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.
1: Evening Drive Time with DJ Chris.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 9 p.m. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: 100 FM।
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान

चलो मैं चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ हैं और कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। सुन रहे FM 100।

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ हैं और कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। सुन रहे एफएम 100, लेकिन खैर मेहनत से बनाते हैं और आप अप्रिशिएट भी करते हैं, थैंक यू वेरी मच। टू द ट्रैक से

0: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी, पाकिस्तान का आईन और कानून,
2: बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है।
3: Active, yummy, adorable.

बस कवाली लगा दी, बस आप क्यू शीट देखें, आप कोशिश किए जरा मेहनत के साथ। अच्छा जना, मिसेस फारूक आ गई, गुड इवनिंग, और बहुत सारी दुआएं आपने दे दी हैं, बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक। और जनाब संजीदा जी भी संजीदगी से आ गई हैं और वेलकम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम संजीदा, क्या हाल है आपके, ठीक हैं? वही जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानिब।

जालिमा, चेक इंडियन गाना भी याद आ रहा, शाहरुख खान की मूवी का, और मायरा खान भी थी उसमें। फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, क्या था भाई? अच्छा जनाब, पीर एम इलियास अयाज भाई, वेलकम। आई होप यू आर योर शो गुड। पीर साहब, उम्मीद करता हूँ। बिलावल क्या, बिलावल भाई के लिए तो आज सारे गाने। अच्छा अयाज भाई, ओके देर शाज, क्या एक मिनट मैं बैकग्राउंड लगा लूं। साहबजादा भाई, आप बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा जनाब, और इसके अलावा संजीदा कह रही है आप बुजुर्गों की दवाओं से ठीक हो, कल शो बेहतरीन था, कल शो बेहतरीन था, आज भी इतनी मेहनत से कर रहे हैं, आज का तो बताओ। और यूके से नादिया, तुम जो है ना मजे मजे के खानों की जो है ना क्लिप्स बना बना के मुझे भेजनी है ताकि और भूख लगे। और ये जो है ना, आपने जब यहाँ कराची आना है ना, तो ये सारे खाने बनाने भी हैं, हमें सिर्फ दिखाने नहीं है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और वो है कैसे, थोड़ा सा जरा मेलोडियस ट्रैक मैं आपको सुनाता हूं।

0: मैं नहीं समझ, अब्दुल करीम भाई मैं बिल्कुल नहीं समझा, समझाओ मुझे, खुल के समझाओ क्या है जी चक्कर। बिलावल कह रहे रमजान पठान और अंजलीना को सलामत चले जनाब उनकी जानिब से, वालेकुम सलाम। पीर साहब क्या कह रहे हैं, आयाज भाई नाइस शो आई लाइक इट, एक सॉन्ग तसव्वुर, देखे आज तसव्वुर खान का आज नहीं, कल थे ना सारे तसव्वुर वाले सारे, आज जरा डिफरेंट स्टाइल का होता ना शो, समझा करो तुम लोग सारा दिन मंडे बना दोगे तुम, फुल टाइम मीडियम वेव नहीं जैसे होते थे पुराने वक्तों के गाने पर। ये आवाज मेहंदी हसन की मौसी की तरतीब दी है एम अशरफ ने, वो उस जमाने का दौर मुझे याद आता है बहुत फिट, उससे तो यादें जुड़ी हुई है लेकिन ये जरा सा डिफरेंट है, आज जरा नए गाने। अच्छा जी 9:30 और एक मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे, बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ,
2: फैब से जैज 5G।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकलीफ। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365
4: Active Yummy Adorable 7 Babe, I've got a crush on you.
5: ये प्यास तो सुनो यार, ये प्यास तो
0: सुनो यार। जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और अच्छा जी पहली कवाली पसंद आई है, उसी तरह का एक और भी मेरे पास जरा एक वर्जन पड़ा हुआ है, जरा उसको चेक करते हैं।

जनाब आंखें उड़ीक रही हैं और आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर। हाय हाय, बस इतना सा था। इसके बाद जो मैं गाना सुनाने वाला हूँ, क्या बात है।

0: yummy.
1: जी वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिर 100 जरीनूर, क्या कह रही, नाइस सॉन्ग। और पीर अमिलियास आगे सर जी, हुमैरा अरशद भाई, हुमैरा पीर भाई बस कर दो, रिक्वेस्ट नहीं, मैंने पहले शो के स्टार्ट में आपसे कह दिया था कि रिक्वेस्ट नहीं करो पीर भाई, ये तो नहीं, ये तो ज्यादती है, फिर मुस्तकिल आप जो है ना फिर फरमाइश करे जाना। एंजेलिना कह रही है ब्यूटीफुल प्ले लिस्ट एंजेलिना जी, बहुत शुक्रिया। और बिलावल कह रहे सर रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, बिलावल भाई कुछ ना कुछ होता रहे ना, शुक्र करो मालिक का। अच्छा जी संजीदा क्या कह रही है, आजकल दोबारा मशहूर हो रहा है वो लम्हे, ये मशहूर कब नहीं था ये मुझे बता, हर टाइम हर वक्त मशहूर था ये गाना, ये है कि दोबारा से जरा आतिफ असलम ने गाया है तो जरा और जो है वो इन हो गया फिर से, ये कह सकते हैं आप, लेकिन हिट तो है भाई, उस वक्त भी हिट और आज भी हिट। उमा सिद्दीकी भी जो है वो हमें शौक से और गौर से सुन रही है और कह रही प्लेलिस्ट तो जबरदस्त है, मजा आ रहा है, एक सॉन्ग इंग्लिश है बिल्कुल जनाब, थोड़ी सी देर में यार मैं आपको एक इंग्लिश गाना सुनाता हूँ, चले आप जरा। उमा जी ने बात की है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्यू शीट में बना हुए हैं और इंग्लिश गाना भी है तो इसलिए, ये एक गाना है, बैंड का नाम पता क्या था, 1927। आप ये मत समझना कि उस दौर का गाना है, बैंड का नाम ही उन्होंने ऐसा रख दिया कि भाई 1927 If I Could गाने का नाम है। और ये गाना पता नहीं एक दौर में मुझे इतना अच्छा लगता था, वजह कहती है ये मुझे नहीं पता लगा।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: दुलवाई जनाब यार ऐसे कुछ बात है इस ट्रैक इफ आई कुड और हाय मिसेस फारूक क्या बात है यानी अमेजिंग सॉन्ग क्या बात है राइट बिल्कुल सही बात की फील है इस गाने में मजा आता सुनने का अच्छा जनाब दादू से अनवर पताफी पताफी साहब की हाल है पता है आपका नाम मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मिठाई का नाम है एफएम की टीम समेत सबको सलाम दुआ सिंधी कलाम था अच्छा जनाब चले पताफी भाई बहुत शुक्रिया और बड़े दिन से गायब थे आप सर किधर हैं अच्छा जी टाइम चेक और 5 मिनट की दोस्तों ब्रेक तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद सुनते रहे एफएम 100 अयाज अहमद के साथ मैसेज करेंगे KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 बार
0: Up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up, let the music begin.
1: FM 100, where the vibes are proud.
3: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. This program is brought to you by
4: Sagar Khanam Karachi ki takleef.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सर दर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट के एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔

हाय जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस के सिलसिले जारी है. और अम्मा जी कह रही है कि जब बैकग्राउंड म्यूजिक है रेड बुल जिस तरह एनर्जी देती है ऐसे ये भी दे रहा. अम्मा जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी पतासी, हाँ वो भी कह रही पतासा याद आ गया. नादिया मलिक क्या हो गया? यूके में लगता है पतासे याद आ रहे हैं नादिया मलिक को. वैसे मैंने एक बात नोट की, यूके में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, हर तरह का सामान मिल रहा है पाकिस्तान में. हमारा एक बहुत प्यारा सा दोस्त है अली शाह, उनका नाम है. पहले उनका नाम ताहिर था, अब अली शाह हो गए. तो लंदन में वो होते हैं, वो बताते हैं यार रीटा इमली तक मिल रही है यहाँ पे. बताओ याद है ना बचपन में वो बैली वाली, बिल्कुल जितना गलीज उतना लजीज. यार मैं बता रहा हूँ आपको, ये छोटी सी प्रोडक्ट जो है ये इतनी हिट हुई हुई है, बाहर तक फैल गई है. ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं भाई वहां पे. अचानक मुझे याद आ गया वैसे ये. अच्छा जनाब और मिसेस फारूक क्या कह रहे हैं? आप इतने लाजवाब सॉन्ग्स प्ले करते हैं फिर भी लिसनर्स रिक्वेस्ट कर, यही तो समझ नहीं आ रही मेरी, समझ नहीं आ रही मैं इनका क्या करूं. बस दुआई कर सकते हैं. अदीला बहन आ गई, सलाम प्यारे अयाज भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूं. क्यों शीड आज भी लाजवाब है. इस खुशी में संजीदा आप ही को एक सॉन्ग डेडिकेट. मैं ये अगला जो गाना ना अदीला बहन आपकी तरफ से हमारी जानिब से सबकी जानिब से संजीदा को जो है वो मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं, और वो है कैसे.

वाह जनाब, क्या खूबसूरत ट्रैक है ये। और इसी बात पर एक और जबरदस्त ट्रैक आप सबको मेरी जानिब से।

मुआजन आप सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस 3636 पर। बिलावल कह रहे हैं सर क्यू शीट पर आज ज्यादा मेहनत की है। सरकार हमेशा ही करता हूँ, हमेशा ही मेहनत होती है, लेकिन आज आपको मेरे ख्याल से फील हो रही है। क्या गाना था यार, ये भी जबरदस्त और अच्छा जनाब। इसके अलावा अयाज मेरी सिस्टर आ रही है कनाडा से 20th को, नाजिस जाफरी की कोई सॉन्ग अपनी पसंद का डेडिकेट कर दें, मैं रिकॉर्ड करूंगी। अभी कर दूं गाना डेडिकेट, 20th को करूं। कब करना है डेडिकेट? अभी करना है तो लीजिए जनाब ये गाना, हम उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं क्योंकि आ रही

फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एफएम 100 ऑन टाइम स्पीड के साथ दोस्तों गुजर रहा है मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। यानी एनर्जेटिक शो, ऑसम ऑसम सॉन्ग्स, और एनर्जेटिक होने की बात किए तो एक म्यूजिक और एंजेलिना केनी किंग दीदी सॉन्ग पर तो परफॉर्म होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये वाला सॉन्ग जरा चेक करें, इस पे परफॉर्मेंस हो जाए।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: क्या बात है जनाब, मजा आ गया सुन के। और मिसेस फारूक भी एंजॉय कर रही है फुल वॉल्यूम में। वाह क्या बात है। अदीला कह रही है अयाज भाई सॉन्ग्स के लिए थैंक्स भाई, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप बहुत मान देते हैं। अरे आप हैं अदीला बहन, आप हैं इतनी अच्छी स्वीट सी। अच्छा जनाब, मैं एक और खबर सुन रहा था, बल्कि पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले शहरी दुनिया के सिर्फ 9 ममालिक का सफर बगैर पेशगी वीजा हासिल किए कर सकते हैं। यानी विदाउट वीजा जो 9 ममालिक हैं, जो 9 कंट्रीज हैं, कौन सी है जरा चेक करें आप। यानी रेटिंग जो है 183वें नंबर पर आ गई। मुबारक हो, तरक्की के बजाय हम पीछे से तरक्की कर रहे हैं। अच्छा जनाब, मुल्क चेक करें जहां हम जो बगैर वीजे के जा सकते हैं। बारबाडोस, डोमिनिका, दिगंबिया, हेटी, माइक्रोनेशिया, रवांडा। अबे कौन से मुल्क है, मैं तो नदीम भाई कौन से मुल्क है, नाम ही पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। रवांडा कहाँ जा रहे हो, 2 दिन के दौरे पे रवांडा। अब इससे अच्छा मैं सदर चला जाऊं। क्या हो गया, कब तरक्की करेंगे हम लोग। अफसोस होता है यार, मुल्क के जो हालात अभी मैं देख रहा हूँ, पेट्रोल के लिए लोग बड़े परेशान हो गए यार। मुबारक हो, 382 तक तो मैं पहुंचा गया हूँ, लेकिन हर रोज जो है ना वो बढ़ रहा है। तो भाइयों मुबारक हो आप सबको, आराम से घर में सुकून से सारे बैठे हुए और पेट्रोल डला के आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है वैसे। अच्छा जी, हुमा सिद्दीकी को गाने पसंद आ गए, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। राज जी एक और हिट गाना, हाय हाय हाय, ओरिजिनली तो माइकल जैक्सन है और बीट इट ओरिजिनल तो सुना ही हुआ, लेकिन ये जरा डिफरेंट स्टाइल है, चेक करो।

जना सुन रहे फिर 100 है अजहमत के साथ। और पता नहीं दुआ जी कह रही है आज भाई आपके वालिद साहब को, आपके चचा को, आपके मामा को, आपके बड़े भाई को, मतलब सबको जो है ना प्यार भरा था भरा दुआ का सलामत है। दुआ जी वालेकुम सलाम, सबकी जानिब से वालेकुम सलाम। बिलावल कहना सर छोटा भाई रावल आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम रावल, कैसे हो? चाची मेरी सुन रही है, चाची कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कह रहे रवंदा में काले पानी की सजा वाले जाते थे। अच्छा जी, तो ये वाली स्टोरी है यार। क्या ये भी ट्रैक था जो मैं माइकल जैक्सन का प्ले कर रहा हूँ जरा नए स्टाइल से। ऑरिजिनली उसकी तो खैर क्लास ही अलग है, लेकिन ये भी यार अच्छा लग रहा है। हाय हाय, नादिया मलिक कह रही है आरजे नहीं तो डीजे तो तुम कंफर्म हो। सॉन्ग सिलेक्शन जबरदस्त होती है। और जो लोग कहते हैं कि आज अच्छी क्यू शीट बनाए, तो ये बात पसंद नहीं आई भाई नादिया मलिक को। यानी आज क्या मतलब हुआ कि मैं आज ये बिल्कुल टेक्निकल बात आपने सही की, क्योंकि आप खुद आर्टिस्ट है ना। वह जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने पर वो चेक करें आप।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक। अच्छा जनाब, तानिया हसन भी आ गई। तानिया जी कैसी हैं आप? और चाची क्या कह रही हैं कि अफ्रीका में आफ्टर मगरिब आप निकल नहीं सकते, वरना लुट जाएंगे। कराची का टच आया थोड़ा सा। अच्छा भाई, मेरे बहुत प्यारे से दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कैसे मिजाज है? खालिद मैनी भाई, खालिद मैनी हमें सुन रहे हैं, साथ में इमरान अली साहब, डॉक्टर साहब, वैसे हम उनको प्यार से कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत जल्द मैं आपको एक न्यूज सुनाने वाला हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त सा शो जो है वो डिजाइन हो रहा है, और वो कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी टीम जो है इसमें मेहनत कर रही है, तो जैसे ही कुछ हमें अपडेट मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ। और वो चैनल भी ढूंढना है आपने, डॉक्टर साहब चैनल का कुछ करो यार, जगह जगह पहुंचा दो वो चैनल। लेकिन बहरहाल जो होगा अच्छा होगा, एक चैलेंज जो है वो डॉक्टर साहब ने और हमारी पूरी टीम ने ले लिया है, खालिद मैनी भी उसका हिस्सा बन गए हैं, और इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। और इसी बात पर ये गाना इस टीम को मैं डेडिकेट करने वाला हूं।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100, where the vibes are proud.
2: This program is brought to you by
3: Shagat Khanam, Karachi Ki Takleef.
4: HPSL बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत
5: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की उन पर काम का बोझ ना डाले उनसे उनका बचपन ना छीन पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे ज़हनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
7: FM 247 365 FM 247 365
8: Active
9: Yummy
8: Adorable Seven
10: I've got a crush on you
11: Listen to me

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं एफएम 100 अयाज अहमद के साथ, और साथ साथ जनाब मैसेजेस भी आपके पहुंच रहे 3636 पर। और एक नाम मैं भूल गया जनाब, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है, इसरार अली भाई। मैं तो समझा इसरार भाई छुट्टी करके घर चले गए, लेकिन इसरार भाई जो है ना, इसका मतलब है दिल के साथ काम कर रहे हैं। इसरार भाई आपके लिए एक मैंने स्पेशली गाना निकाला, जरा सा एक दो मैसेज पढ़ लूं मैं। अच्छा जी, अंजलिया कह रही प्राइस तो रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कम करते हैं तो 20 पैसे। अरे हाँ यार, ये वाली बात आपने सही की, बढ़ते रुपयों में है और कम जो है पैसों में हो रहे हैं। यार ये भी ज्यादती है वैसे। बिलावल कह रहे चाची जान को सलाम उनकी जानिब से। वालेकुम अस्सलाम। गयासुद्दीन बलमल मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, पूरी टीम को सलाम कह दिया, वालेकुम अस्सलाम। खालिद मैनी भी हमें सुन रहे हैं, इमरान अली साहब भी, डॉक्टर साहब बस आपके मुंह पे डॉक्टर सूट करता वैसे। अच्छा लोग अक्सर इनको पहले देख के समझते हैं जानवरों के डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इंसान भी एक जानवर है टेक्निकली बात देखी जाए। और खालिद वैनी भाई क्या कहना, ये तो एफएम 100 तशरीफ लाते ही रहते हैं, ये भी जिगरौट है हमारे। लेकिन इस वक्त बात हो रही है इसरार अली भाई की। इसरार भाई बहुत सीरियस आदमी है, और इनके लिए स्पेशली ये गाना मैं लेके आया हूं, ये ट्रैक इसरार भाई आपके लिए।

वेलकम बैक, सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस के सिलसिले में। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का, इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने का, बहुत शुक्रिया। कह रहे कि कहां से लाते हैं इतनी बातें, सरकार बातें कहां से लाता हूं सर, दिल से आ रही है और हालात जो है ना वो लेके आ रही है, जो इस वक्त सूरत हाल एक आम आदमी पे गुजर रही है, बस वो मैं कोशिश करता हूं हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पे, फिर भी दिल थोड़ा घबराता रहता है। भाई जनाब और इसके अलावा हुमा क्या कहनी, पाकिस्तानी अमेरिकन सॉन्ग्स का तड़का लगाते हो जो आप आरजे डीजे मिक्स आयाज होते हैं। अच्छा जी, तो काफिया मिलाया मैंने, वैसे बेड़ा गर्क कर दिया उस काफिये का, लेकिन हुमा जी बहुत शुक्रिया आपका अगर ऐसा सोच रही हूं। अच्छा जनाब, और यूके से नादिया मलिक पूछ रही है चाची मूव टू अफ्रीका, अरे नहीं वो तो किससे सुना रही है अफ्रीका के, चाची ने दुनिया देखी हुई है बेटा, खाली तुम अकेले यूके नहीं गई हुई, चाची ने माशाल्लाह पूरी दुनिया देखी है और अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करती रहती, ज्यादा शौकी ना हुआ करो नादिया मलिक। नादिया जी हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त है इसलिए जिक्र कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और वो है कैसे यार, ये गाना भी बड़ा आला है।

भाई जना सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 में। मदिया जी बहुत शुक्रिया, आई आज लव यू, नहीं लव ज्यादा नहीं करें, कुछ लोगों की हट रही होती इस बात, बहुत शुक्रिया आपका, इतना प्यार इतनी मोहब्बत जो आपने दे दी है मैसेज में। हाय हाय बिलावल कहने सर आज तो शक दे फटे गाने, अच्छा जी बड़ी मेहरबानी सरकार। अच्छा भाई हमारे बड़े प्यारे से दोस्त जो हैं जिनका नाम मैं बार बार खालिद मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे भाई ऑन एयर मेरा नाम जो है आप एम खालिद खान मीट मीडिया, अब आराम है भैया खालिद मैनी, ओ फिर मैं अब क्या करूँ मैनी को क्यों डिलीट कैसे करूँ मैं एम खालिद। अच्छा एम खालिद ऐसे लग रहे मौसीकार का नाम, ये मौसीकी तरतीब दी है एम खालिद ने, इस तरह भी हो जाता है ना भाई जनाब। लेकिन नेक्स्ट ट्रैक जो है अपने प्यारे से दोस्त मिस्टर एम खालिद को मैं डेडिकेट करता हूँ और वो है कैसे

वाई जनाब सुन रहे FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस 3636 पर। नवेद नदीम कह रहे हैं सॉन्ग आपका नहीं आगे क्या लिखा है मुझे कुछ समझ, नवेद भाई दोबारा लिखे किसी से लिखवा लें अगर समझ में नहीं आ रहा तो, मुझे तो मेरे सर के ऊपर से चला गया मैसेज। अच्छा भाई खालिद मैनी भाई पसंद आया गाना कि नहीं? ये ऑल टाइम हिट गाना है, जब भी आप सुने तो अच्छा लगता है। और मिसेस फारूक कह रही है उधम और ब्रेक डांस का दौर भी याद, बाकी यार ये माइकल जैक्सन भाई ने कमाल जो है ये ब्रेक डांस वाला जो था ना सिस्टम ऑन किया हुआ था उस दौर में 80s में 90s में। अच्छा जनाब भाई दिलजीत भाई ने बड़ा जबरदस्त कॉन्सर्ट किया भाई लंदन में और 92,000 लोग तो मतलब रजिस्टर्ड हैं कि मतलब इतने लोग तो कंफर्म हैं जिन्होंने टिकटें ली हैं, मुफ्त कितने होंगे उसके अंदर। तो इतना बड़ा शो कर डाला है, इससे पहले माइकल जैक्सन ने ये किया था वहां पे 80,000 के करीब। लेकिन देखो यार बड़ापन है उसका भी, तो लोगों ने कहा भाई आपने माइकल जैक्सन को बीट किया, तो उसने कहा भाई माइकल जैक्सन अलग ही लेवल का बंदा है। और मैं आपको बताऊं वो उस दौर में जब इतना सोशल मीडिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था और उस पर यह हाल था कि 80,000 से ऊपर लोग आ गए। अगर आज माइकल जैक्सन होते और इतनी मेरे ख्याल से दो स्टेडियम करने पड़ते, माइकल जैक्सन है और वो एक ही था। बहरहाल जी टाइम स्पीड के साथ गुजर रहा है, आप लोगों का प्यार आप लोगों की मोहब्बत जो टाइम गुजर रहे उतने स्पीड से मैसेज भी आ रहे हैं और प्यार मोहब्बत भी मुस्तकिल मुझे नजर आ रहा है।

समय जनाब सुन रहे FM 100.1047 हो गया टाइम और नदीम अख्तर साहब भी मुझे नजर आ गए थोड़ी देर में वो शो करेंगे और इससे पहले कि मैं और मैसेजेस पढ़ूं आसिफ भाई का मैं जिक्र कर दूं। भाई आसिफ भाई कैसे हैं आप, ड्राइव भी कर रहे हैं और माइकल जैक्सन यार वैसे इस दौर के जो है ना 80s के 90s के जो बच्चे जो हैं अब तो खैर बाबे हो गए लेकिन ये माइकल जैक्सन तो ऑल टाइम फेवरेट कहने की बात ही नहीं है। खैर मुझे तो मैडोना भी अच्छी लगती थी, लुक्स नहीं वैसे भी गाना भी अच्छे गाती थी। क्यों आसिफ भाई, और वो जेंजी से बड़े परेशान है, ये जो जेंजी आ गए इनका क्या करें, ऑटो पे चल रहे फुल टाइम, गाने भी आजकल वैसे ही नहीं, कुछ गाने अच्छे भी हैं यार आसिफ भाई ऐसी बात नहीं है, गाने अच्छे भी बनाए लेकिन ये कि सही कह रहे हैं आप, ज्यादातर गाने जो है ना जरा मजा नहीं दे रहे। खैर जी नौरीन तौसीफ आ गई, अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मिजाज कैसे हैं, सदा मुस्कुराते रहे, बड़ी मेहरबानी सरकार बड़ी मेहरबानी। अभी शो सुनना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में टाटा बाय बाय करना, लाजवाब शो है सुनना, अभी शुरू किया लाजवाब भी हो गया, नहीं करो नौरीन ऐसे नहीं। अच्छा जनाब और हुमा कह रही है कि आज मैं स्टार्ट से लेकर आपका शो रिकॉर्ड किया, अच्छा वाकई में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, अच्छा जनाब चाहे क्या बात है, और प्लेलिस्ट पसंद आ गई भी, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी और अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, यूसुफ भाई भी आ गए पापोश से और सबको सलाम दुआ कह दी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी नए गानों

वजह सुने एफएम 100 और देखते देखते टाइम गए, वो कह रहा है टाटा बाय बाय करें। अच्छा जाते जाते ना मुझे एक अच्छी देसी टच भी याद आ गया और अता भाई याद आ गया, थोड़ा सा ये ट्रैक और उसके बाद टाटा बाय बाय।

0: वेलकम बैक टू मेरी जिंदगी है भाई, क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। खुशबू का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, कुछ आपको पता है? अगर सुनने की सलाहियत ना होती तो इंसान क्या करता भाई, चार दिन पुराना खाना भी खा लेता भाई, सूंघने की सलाहियत ही नहीं, खाना बासी है या ताजा है, और क्या क्या हो सकता था सूंघने की सलाहियत के हवाले से। ये अल्लाह ताला ने जो हिस इंसान में डाली है, वैसे तो हर जानवर में भी होती है, और एक जानवर इस हिस के हवाले से बड़ा पॉपुलर है, आपको बताइए, उसकी खामखा मिसालें भी देते हैं हम। लेकिन खैर, सूंघने की हिस के हवाले से हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे खुशबू के हवाले से। हाँ, अच्छा लगता है यार, हमारे सामने वाली जो शख्सियत है कोई भी हो, तो वो अगर मिसाल के तौर पर उसके जानिब से खुशबू जो है वो हम तक पहुंच रही है, तो एक अजीब सा उसकी पर्सनालिटी का हम अंदाजा लगा लेते हैं। यार क्या बात है भाईजन, भाई से खुशबू आती है, जबरदस्त खुशबू आती है, ऐसा है ना। और इसी वजह से अब देखें आप कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कैसे भरा हुआ है वो इस ब्रेक के बाद बताएंगे।
1: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने हो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ और जनाब आज ओल्डी गोल्डी शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर 3636 पर कर रहे हैं आप मैसेज खुशबुओं की कर रहा हूँ बात क्योंकि मैंने अभी सवाल फ्लोट नहीं किया तो उससे पहले कुछ खुशबू का जिक्र कर रहे हैं तो खुशबू जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी पर बहुत असरअंदाज होती है और जो है बू जो है बदबू तो नहीं कहूंगा खुसूसी तौर पर कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनकी मौजूदगी जो है वो वबाले जान बन जाती है मट्टी धूल पसीने की स्मेल अच्छा मैं भी ये जिक्र कर रहा हूं ना तो आप लोगों को वैसे ही अजीब सा लग रहा होगा अरे यार क्या बात कर रहा अब नहीं कर रहा यार बात सुनने की है ऐसा भी होता है तो इंसान की शख्सियत का पहलू जो है वो साफ सुथरा रहने में और हमारे दीन में भी ये कहा जाता है सफाई नफ्स ईमान है लेकिन इसके साथ साथ खुशबू का भी जिक्र है खुसूसी तौर पर मर्द हजरात के लिए औरतों के लिए खुशबू का लगाना जो है वो यानी कि समझ रहे हैं ना दीन के हिसाब से कह रहा हूं लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो दौर बदलते रहते हैं ठीक है ना तरक्की करते रहते हैं लोग तो उस हिसाब से ये बात की जा रही है तो खुशबू बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इंसान को अच्छा लगता है इवन ये कि आप थके हारे जब घर पहुंचते हैं और घर में कोई महकी महकी सी खुशबू हो जिसको कहते हैं कि एयर फ्रेशनर हवा को फ्रेश कर देने वाला मतलब खुशबू बिखर जाए वो अगर हो तो आप इंसान को कुदरती तौर पर ज़हनी एक सुकून मिलता है राहत आती है तो खुशबू का ताल्लुक जो है वो इंसान की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा रहना चाहिए और मैंने जैसा कि बताया सोशल मीडिया पर अब तो बेतहाशा एड हर कोई परफ्यूम बना रहा है महंगे अब परफ्यूम्स भी जो ओरिजिनल हैं वो इतने एक्सपेंसिव या इतने महंगे हो चुके हैं कि ओरिजिनल खरीदना जो है वो इस्तेताद से बाहर जा रहा है एक मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास बंदे के लिए इवन ये कि जो अपर क्लास के लोग भी हैं वो भी सेकंड कॉपी को यूज कर लेते हैं क्योंकि खुशबू तो उससे भी आ रही है सेकंड कॉपी भी बहुत महंगी होती है ये जो हम यूज करते हैं ये थर्ड फोर्थ कॉपी होती है और खैर बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है प्राइवेटली परफ्यूम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको जो है वो बेच रहे हैं ऑनलाइन उसके साथ साथ अगर आप किसी भी ब्रांडेड जगह पर चले जाएं ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए तो हर ब्रांड ने अपने परफ्यूम लॉन्च किए हुए सही जा रहे हैं भाई खैर चलें खुशबू के हवाले से बातें करते रहेंगे लेकिन सवाल पहले मैं फ्लोट कर दूं सवाल आज का ये है कि बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसने अपने करेंसी नोट जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं ना एक तो वैसे ही एक नोटों की खुशबू होती है वो तो अलग है लेकिन उन्होंने बाकायदा ऐसे नोट जारी किए कि जिसमें से फ्रेग्रेंस आती थी खुशबू आती थी तो वो कौन सा मुल्क है जिसने पहली मर्तबा ये कारनामा सर अंजाम दिया था कि जिनकी करेंसी खुशबूदार थी ये सवाल है आज का और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब सबसे पहले फीता काटा है हमारे यूसुफ भाई ने पापोश से और तमाम एफएम 100 की फैमिली को सलाम कहा उन्होंने खुसूसी तौर पर आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर इमरान भाई खिताब गुल लाला गुफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को सलाम कहा थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई जीत रहे हैं मुस्कुराते रहे
1: दादू से अनवर पिताफी भाई भी आ गया है सही सही कहते जनाब एफएम के तमाम स्वीट लिसनर्स को सलाम अदा एक सिंधी गाना अगर हो जाए
0: सही आज तो नहीं हो सकता आपको पता ही है वजह कि आज जो है ओल्डी गोल्डी क्लासिक चल रहा है और उसके बाद एस गुल भी आ गई हैं मेरी बहना कह रही हैं सलाम कैसे हैं नदीम भाई आप स्वीट लाला को संजीदा आप ही को मुझको मानूर को और तमाम सुनने वालों को सलाम वालेकुम असलाम शहजादी बहना भी आ गई भाई जरीन नूर कह रही हैं सलाम
1: कैसे हैं आप वालिद साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है मेरी बहन ने, और कह रही आज का शो संजू को बहुत पसंद है, शायद आ जाए भाई कोई भी सॉन्ग संजू के नाम जरूर करेंगे जनाब। और वैसे आज का शो वाकई उनको पसंद है, एक गजल का और एक आज का, वो मिस नहीं करते और उम्मीद करता हूं कि जरूर आएंगी। और सलाम सुनाओ चाची को, संजीदा जी को, जरीन नूर को, सीमा साइम को और अयूब लाला को सलाम, ये कह रहे हैं हमारे सलीम मेमन भाई। भाई बड़ी बात है सलीम मेमन भाई, आज पहला मैसेज आपका अच्छा वाला आ गया, वरना शुरुआत ही आप लतीफे से करते। इश्क का समंदर भी अजीब है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरता रह गया वो बेचारा शौहर। गुड है सलीम मेमन, अच्छा आया, अच्छा आया, मुझे अच्छा लगा। और भी लतीफे भेजे वो बाद में पढ़ेंगे। इमाम बख्श सयाल साहब टंडोजाम से सही उन्होंने मैसेज किया है, आपको इमाम भाई खुशामदीद कहेंगे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम के बाद कह रहे हैं नदीम भाई आपके वालिद साहब को, आपके चचा को, आपके मामू को, आपके बड़े भाई को, आपके छोटे भाई को, आपकी टी शर्ट को नीली हो या पीली, आपकी कैप को सफेद हो या काली, और चलने वाली बाइक की चाबी को, फोन को, कवर को, साथ में सबको दुआ सलाम, सलामत रहे लवली ब्रदर। और आखिरकार भाईजन संजू भी आ गए हैं, हमें पता है संजू आएगी। कह रही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती हो, आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहे, खुशगवार दिल की धड़कनों की धक धक से खुश आमदीद कहती हूँ मन। अच्छा कहती है वत इज्जो मन तो शाह वत जिल्लो मन तो शाह, ये तो फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है। और कह रही रूहमन दिल से दुआएं हैं, रब ताला हमेशा आपको इज्जत वाली शोहरत अदा करे, आमीन सुम आमीन, किसी हासिद शर फैलाने वालों से महफूज रखे, आमीन। इख्तिताम तक साथ रहूं, सांसों की रवानी वफा करे तो हमेशा साथ रहूंगी इंशाल्लाह ताला, ता कयामत रहे जनाब ये सीन। और मेरी बहुत मुखलिस दोस्तों के लिए ढेरों दुआएं, प्यार, प्यारी सी जरीन नूर और प्यारी सी नौरीन बहना, प्यारी सी अदीला, अल्लाह पाक हमेशा ये रिश्ते कायम रखे, इलाही आमीन आमीन। अच्छा भाई संजू के बहुत सारे मैसेज हैं, संजू हम आपके मैसेज ऐसा ऐसा पढ़ते रहेंगे। और अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे संजू को, किसकी जानिब से, जरीन नूर की जानिब से। एलो फड़ो

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। और जनाब लवली का मैसेज हो गया था, अदीला बहना आ गई हैं और कह रही हैं सलाम मेरे बहुत ही प्यारे भाई नदीम, कैसे हैं आप? आज की प्लेलिस्ट बहुत ही जबरदस्त होती है, मैं फरमाइश नहीं बल्कि आजमाइश करती हूँ भाई, मुझे खुशबू शदीद पसंद है। संजीदा अभी को सलाम और एक सॉन्ग है जी, ते हैं जी, मुझे पता था जी, बिल्कुल सॉन्ग डेडिकेट करेंगे आपकी जानिब से, पक्का पक्का संजू को। और खुशबू आपको बहुत पसंद है, अच्छी बात है, खुशबू पसंद होनी भी चाहिए। खुशबू का ताल्लुक जो है वो आपकी आपकी पर्सनालिटी जो है, अगर आपने अच्छा, एक और बात पर्सनालिटी से मुझे याद आई बात, इंसान को अपनी पर्सनालिटी जो भी है उसकी, उसको बढ़ाना चाहिए, मतलब बेहतर से बेहतर करना चाहिए। अगर सपोज कि आपको शुरू से आदत है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो ये तो अच्छी बात होगी, आपकी पर्सनालिटी हर एक को पता चल गई कि भाई ये बंदा जो है यार साफ सुथरा रहता है। अब लेकिन आप खुशबू नहीं लगाते, अब वो आपकी पर्सनालिटी को अगर आप खुशबू का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लग जाएंगे। इसी तरीके से बाल तरशवाने की जो बात है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। खुसूसी तौर पर मैं नौजवान लड़कों की बात करूंगा, क्योंकि एक अरसे से, मतलब पिछले तकरीबन 15-20 साल से कुछ सिलसिला कार ऐसा है, 2000 के बाद से एक माशाल्लाह कहूंगा कि एक रिवाज जो है हमारे नौजवानों में ये आ गया कि दाढ़ी जरूर रखते हैं। माशाल्लाह मैं क्यों कह रहा हूं, समझ गए होंगे आप। तो ये एक पहले अगर ये आप पहले चले जाएं 20 साल पहले, यानी कि 90s में या 80s में, तो उस वक्त जो फैशन था दाढ़ी का बिल्कुल ही नहीं था। ज्यादातर आप देखें हीरो भी क्लीन शेव, मैं हॉलीवुड के हीरोज की ज्यादातर बात करूंगा, और इसी तरीके से बॉलीवुड के हीरोज भी देख लें, हमारे पाकिस्तानी हीरोज भी देख लें। लेकिन फिर जो है ना, 90s के बाद से फिर हल्की हल्की शेव रखना शुरू की। मैं उन हीरोज की बात कर रहा हूं, मतलब जाहिर है हम जो हमारे पसंदीदा हीरोज होते हैं, हीरोइंस होती हैं, उनको देख के ही हमने फैशन आइडियलाइज करते हैं उनको, और फिर उनको फॉलो करते हैं। तो इस वजह से मैं ये मिसाल दे रहा हूं हीरो और हीरोइंस की। तो फिर ये हल्की हल्की शेप वाला सिलसिला आया, और अब जो है माशाल्लाह से दाढ़ी वाला सिलसिला आ गया। लेकिन जो आम हमारे नौजवान हैं, वो दाढ़ी तरशवाने में जो है काफी कोताही करते हैं, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है ये चीज, कि आप जो है वो टाइम टू टाइम दाढ़ी जो है तरछवाते रहें, बालों की कटिंग वटिंग, ये भी आपकी पर्सनालिटी को इम्बोस करती है, आगे लेकर चलती है। इसी तरह खवातीन जो है, खवातीन में एक जमाने में फैशन था चुटिया का, और अगर शादी ब्याह देखें आप पुराने जमाने के, तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि चुटिया लड़कियां बांध के रखती थीं, और परांदे जो होते थे, चुटले जिनको कहते हैं, परांदे भी कहते हैं, वो बड़े रंगीन खूबसूरत किस्म के आते थे, और फैशन के तौर पर उसको जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता था, लड़कियां जो है वो खरीदती थीं और चुटले पहनती थीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज खत्म हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई क्यों नहीं पहन रही, फैशन है, दौर जो है नया आ चुका है, अब वो वाला दौर नहीं है भाई, हमारे दौर में तो ऐसा होता था, अक्सर लोग कहते हैं ना अरे भाई वो ठीक है, वो उस जमाने में अच्छा लगता था, अब फैशन कुछ और है। तो अब ज्यादातर खुले बाल होते हैं, तो उसमें भी लड़कियां तो खैर इन चीजों का ख्याल रखती हैं, बहुत ज्यादा रखती हैं। मैं लड़कों के हवाले से इसीलिए ज्यादा बात की थी, तो खुशबू जो है उसकी बात हो रही थी। मैं बातें ज्यादा नहीं कर रहा, कुछ छोड़ो यार इन बातों को, मजा भी आ रहा है आपको सुनने में। और अगर जो जो बातें मैं कर रहा हूं अपनी आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उस पर अगर आप अमल नहीं करते हैं तो कीजिए। अभी इस पर अभी और भी आऊंगा लड़कों के हवाले से। जिंदगी साथ है, हाय हाय, आज तो खुशबू की महक मुझे पहुंच रही है। हाय लज्जी, क्या बात है जिंदगी। जमीन नूर ने मेरी प्यारी सी बहन ने थैंक यू कह दिया है सॉन्ग चलाने के लिए। और साहबजादा साहब कह रहे हैं फ्रांस ने सबसे पहले मेरा ख्याल है नोट जारी किया था खुशबूदार। साहबजादा साहब आपका जवाब नोट कर लिया है, अब देखते हैं और क्या जवाब देते हैं इस हवाले से। जिंदगी कहती है कि माशाल्लाह से आपकी आवाज का जादू बहुत आला है। और आगे उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिंदगी कह रही है कि तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है, आपका नाम ही काफी है। यानी कि समझ रही है ना। संजू कहती हैं कि रूहमन एक दिन के ब्रेक के बाद आ गई हूं, कल तो मुश्क ने बहुत ही उदास कर दिया था वाकई में। शो की चुलबुली है, आज मेरी बात हुई थी, कह रही थी जैसे ही पेपर खत्म होते हैं हैंडसम का भेजा फ्राई खाने आ जाऊंगी। आज मेरा पसंदीदा सेगमेंट है, आप की तरफ से आपकी रूहमन के लिए हो जाए कुछ। बिल्कुल हो जाएगा आपके लिए, क्या क्या कुछ नहीं होता। यानी कि समझ रही है ना आप। और रूहमन आपके नाम हमें तुम्हारी तरफ रोज खींच लाती है, वो एक बात जो तुमने कभी कहीं भी नहीं। वाह वाह, वो एक पल ही सही जिसमें तुम मयस्सर हो, इस एक पल से ज्यादा तो जिंदगी भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। और कल शो में शिरकत नहीं कर सकी थी, एक जगह मसरूफियत चल रही थी, मगर बहुत मिस किया था आपको रूहमन। पल पल दिल के पास रहते हो, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा, मैं इस हवाले से समझ गया था और तमाम लिसनर्स भी समझ गए थे कि आप कहीं ना कहीं मसरूफ होंगी। मसरूफियत जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। और पड़ोसी मुल्क दो नंबरी करता है, हमारे सॉन्ग कॉपी ना करे उसको चैन नहीं आता। जबरदस्त तू मेरी जिंदगी है, पहले गाने वाला है भाई ये, देखें आप कि कितनी देर में मैसेज पढ़े जाते हैं। और छोड़ के दुनिया तुझको अपना बना लूं, क्या शायरी है, वाह वाह, गाने पसंद आ रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है भाई। हाँ रूहमन, कान में चुपके से बता दें किसने खुशबू भेजी। हाय क्या याद दिला दिया आपने। इस हवाले से भी मैं आप लोगों को एक बड़ी मजेदार किस्म की बात बताऊंगा, और 100% मुझे यकीन है कि बेतहाशा ऐसे लिसनर्स मेरे मौजूद जो मुझे सुन रहे हैं कि मैं जो बात करूंगा उनका दिल के तार कहीं ना कहीं से जुड़ रहे होंगे उस बात से। खुशबू की बात हुई है तो फिर यानी कि समझ रहे ना। सवा गुल जीती रहे, सलीम भाई बहुत खुश रहे, ये कह रही है रूहमन। और अब बातें बहुत हो गई हैं, क्यों ना आपको लेके जाया जाए एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब। ते ट्रैक जनाब ये हम डेडिकेट करते हैं हमारी प्यारी सी अदीला बहन की जानेब से संजू को।

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: वेलकम बैक सुनियो सैया जी के नैनो से ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा. बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब और सुमैया आ गई हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, सुन रही हूँ आपको, सुबह से लाइट जा रही है और आ रही है. पता नहीं मैसेज कब आपको मिलता है, खैर मिल गया जनाब. यूनाइटेड किंगडम बताया उन्होंने, आई थिंक बिकॉज जब भी मेरे पास पाउंड आता है तो उसमें अलग सी खुशबू होती है. हाय हाय, पाउंड की खुशबू, डॉलर की खुशबू, ये तो अलग ही खुशबू है. ना भी आती हो तो भी अच्छा लग रहा होता है. अच्छा जी, कॉल के हवाले से मैं ये कह रही हूँ प्लीज पिक करना शुरू करें. बिल्कुल करेंगे करेंगे. नौरीन बहन हमारी आ गई है, कहती है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आप कैसे हैं, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए भी. और कहती है कि स्विट्जरलैंड ने खुशबूदार करेंसी नोट जारी किए थे. अच्छा, मुख्तलिफ मुल्क आ रहे हैं भाई, कभी कोई बता रहा है इंग्लैंड, कोई फ्रांस और ये आ गया स्विट्जरलैंड. और कह रही है कि जिंदगी में अगर आपको इंतखाब करना पड़े तो उन लोगों का करें, इन लोगों का करें जो आपकी रूह के हर रुख, हर रंग, हर अदा से वाकिफ, वरना सारी उम्र आप अपनी जात का तर्जुमा करते रह जाएंगे. ऐसा बहुत कम होता है वैसे, हकीकत तो ये है नौरीन, मगर ऐसा बहुत कम होता है, नहीं कर पाता इंसान. और मेरी रूह जहां को कतार डेडिकेट कर दीजिए नदीम भाई, अपनी प्यारी प्यारी आवाज में और बहुत सारी दुआएं भी मेरी तरफ से रूह जान को. आपकी रूह जान को जनाब कतार भी डेडिकेट करते हैं. पहले आपका मैसेज पूरा पढ़ लें. और कहती हैं लड़कियों को अच्छी भली सिंगल लाइफ गुजार रही होती है, फिर एक में बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं आ जाता है, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं जिंदगी में आ जाता है. अच्छी भली सिंगल लाइफ गुजर रही होती है. अच्छा, आप ये बात कर रही हैं, देखिए ये अल्लाह ताला ने एक जो रूल बनाया हुआ है ना, ये रहता है. लड़की जो है अपनी उम्र का एक हिस्सा अपने वालिदैन के घर गुजारती है और फिर पिया के घर, यानी कि अपने असल घर चली जाती है जहां पर उसकी नस्ल परवान चढ़ती है. अब ये जो होता है ना कि बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं आ जाता है जिंदगी में, बस इसका इंतखाब जो है वो वालिदैन पर अगर लड़कियां छोड़ देना तो यकीन माने कि मैं ये समझता हूं कि 100 में से 90% लड़कियों की जिंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाए. अगर कोई लड़का पसंद आ गया या कोई लड़का आपको पसंद आ गया और लड़के ने भी पसंद कर लिया है तो अपनी पींगे आगे बढ़ाने से पहले बोल दो भाई कि अगर मैं बहुत पसंद हूं तो रिश्ता भेज दो, बात खत्म. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी जिंदगियों में होंगे, आपके गिर्दो निवाह में बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने ऐसा किया और जिंदगी बड़ी खूबसूरत, बेहतरीन और हसीन गुजरी. जरूर है अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो है वो वालिदैन को बताया जाए और फिर वालिदैन या उसके वालिदैन नहीं माने या वो रिश्ता ना भेजे तो फिर होता ये है कि जिंदगी अपनी अजीरन खुद लड़की करती. उसने अपना माइंडसेट उस लड़की की तरह, उसकी आदतों की तरह कर लिया होता है और जिंदगी में जब कोई और आ जाता है, कोई और शख्सियत हम सफर बनकर आ जाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करते हुए बड़ा टाइम लग जाता है. यार बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी, आगे बढ़ते हैं जनाब मैसेजेस की जानिब. और ये कता जो है वो हम गाना चलाने से पहले जरूर डेडिकेट करेंगे. मेरी बहना अकबर खान साहब आ गए हैं اور اکبر خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا پہلے ان کا میسج پڑھ لیں. السلام علیکم میں نے بھائی بخیر راغلے کیسے ہیں کیسے مزاج ہیں آپ کے ہم بھی آپ کی محفل میں شامل ہیں تمام خوبصورت سماعتوں کو سلام وعلیکم السلام اور کہتے ہیں انگریزوں کے رشتہ داروں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے اور ایک ہمارے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا یار کیا بات کی ہے اکبر خان ہے دل بھر جان ہے دازی خان ہے یار ان کا میسج پورا پڑھ لو ایک اور بڑا انہوں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کیا بات ہے ان کی جناب ان کا میرا کوئی اقتباس بھیجا انہوں نے میں نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت خاتون سے پوچھا کیا میں اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کی خوشبو زبردست ہے میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں اس خاتون نے جواب دیا آپ یہ پرفیوم ہرگز اپنی بیوی کو نہ دیجیے گا وگرنہ ہر ذلیل انسان کو اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا بھائی کیا بات ہے یوسفی صاحب واہ واہ کیا خوبصورت طریقے سے ذلیل کیا ہے بندے کو واہ واہ یہ ہوتا ہے لفظوں کا کمال بھائی مزہ آ گیا اکبر خان آپ کے دونوں میسجز کا بھائی میسجز تو آپ کے اور بھی بےتحاشا ہیں ماشاءاللہ سے جن میں ہمارے علیم الدین یوسف علی صاحب بھی ہیں ہمارے انعام الحق بھائی بھی ہیں سنجو کے بھی بہت سارے میسج ہیں انیس کے بھی ہیں اعجاز کے بھی ہیں عدیلہ کے بھی ہیں تو آپ سب کے میسجز ہم ضرور شامل کریں گے مگر آپ کو لے کر جائیں گے ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب اور یہ ٹریک جناب ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے انور پتافی بھائی کو گو کہ انہوں نے سندھی گانے کی فرمائش کی تھی مگر کیونکہ آج کے شو میں فلمی گانے چل رہے ہیں تو آپ کے لیے ایلو پھڑو کافی دنوں کے بعد یہ میں نے ٹریک چلایا

बैक कहेंगे सुने आप सबको। तो हम जाएंगे जनाब अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब के मैसेज के जानेब और कह रहे हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। गानों की कर दी है इन्हें फरमाइश। अच्छा सेम वही गाने लिखे हुए हम एक अरसे से भाई यही गाने सुन रहे हैं आप। चलें जी कोशिश करेंगे। समी शेख को अयूब आफरीदी को नसीम कुरैशी खिताब गुल्लाला और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर लम्हा दुआ को नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब एफबी एरिया कराची से। अब जनाब एक और शख्सियत है जो कि कल आई थी थोड़ी देर के लिए हमारे प्यारे से अयूब आफरीदी लाला गायब है जरूर कहीं ना कहीं मसरूफ होंगे। इनामुल हक भाई साहब कहते हैं नदीम भाई संडे को सलीम भाई मनोड़ा आए थे बहुत मजा आया था बिल्कुल मुझे याद है आपका फोन भी आया था और सवाल क्या है इन्होंने पूछा सवाल हाय सवाल अभी आपको बताएंगे पहले मुझे मैसेजेस पढ़ने दें क्योंकि सवाल ऐसा है कि जैसे ही सवाल आता है मेरे जहन में बेतहाशा जो है वो बातें आ जाती और फिर वक्त फुर्र करके आगे चला जाता है चर्चा बहुत हो जाती है। और इनका एक सॉन्ग है ना मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना वो हो सके तो प्ले कर दे मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर ये फिल्मी गाना तो नहीं है ये तो मलका तरन्नुम नूरजहान का यानी के समझ अब ये फिल्मी गाना है जरा बताइएगा किसी को बताया तो जरूर बताइएगा भाई। और अब आपके मैसेजेस मैंने पढ़ने के बाद दो काम और करने हैं एक तो हमारे प्यारे से प्यारी सी नौरीन बहना का एक खता उन्होंने भेजा है वो पढ़ना है और भी कुछ था यार वो भी पढ़ना है खैर जी। और जनाब जिंदगी के मैसेजेस हो गए थे अमीन आ गए हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शो वेरी गुड नाइस है तमाम सुनने वालों को सलाम बिग सिस्टर संजू को और मतलब संजीदा लिखा है उन्होंने को सलाम और सॉन्ग डेडिकेट कर दें इखलाक अहमद का थैंक यू सही कह रहे हैं भाई हो जाएगा। अच्छा इमाम बख्श सयाल टंडू जाम से कह रहे हैं कि प्लीज सिंधी सॉन्ग हो जाए। इमाम बख्श भाई आज का जो शो होता है ना आज के दिन यानी के मंगल वाले दिन जो शो होता है ये शो होता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स के हवाले से तो इसमें मैं जो है वो मिक्स ट्रैक्स नहीं चलाता मैं आपका नाम याद रखूंगा हमारे अनवर पिताफी भाई और इमाम बख्श भाई इमाम बख्श सयाल आपकी जानिब से कल गाना डेडिकेट करूंगा आप सुने या ना सुने हमने आपका नाम लेकर डेडिकेट कर देना यानी कि समझ रहे ना। एसगुल कह रही है नदीम भाई अगर हो सके तो अपनी शोना शोना आवाज में अच्छा सा गाना लाला को डेडिकेट कर दीजिएगा मेरी प्यारी सी बहना सवा एसगुल बहुत शुक्रिया मेरी शोना शोना आवाज जीती रहो कोशिश करेंगे। और नदीम भाई मैं प्याज का ठेला लगाता हूँ साहिबजादा साहब कह रहे हैं यार बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह खूब कमाई हो रही होगी भाई सुना है 200 रुपए किलो चल रहा है प्याज। देखो यार मैं एक अजीब सी मेरे अंदर एक आदत है साहिबजादा भाई नदीम भाई का है और मैंने नदीम भाई पढ़ाया साहिबजादा साहब कि मेहनत में अजमत है ये हम जो है ना बस इन्हीं चक्करों में रहते हैं कि भाई ये काम कर रहा है ये काम अरे भाई अपनी मेहनत से काम कर रहा है हलाल रोजी कमा रहा है दैट्स ऑल तो भाई आप ग्रेट हैं भाई अपना कारोबार कर रहे हैं हमसे तो अच्छे हैं आप भाई हमसे बहुत अच्छे हैं आप साहिबजादा साहब हम नौकरी पेशा लोग हैं आप तो अपना कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह। सवाल का जवाब है तुर्की ने 2016 में

0: और अदीला कह रही है नदीम भाई सॉन्ग के लिए थैंक, मैं खुश भाई, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, हमेशा डेडिकेशन पूरी करते हैं। अरे मेरी प्यारी बहना, इस तरह का बात करके शर्मिंदा नहीं किया करते, ये बस आप हो हमारे जितने प्यारे प्यारे से लेसन आ रहे हैं, सबकी मेरी कोशिश होती है कि सबकी डेडिकेशन हो, वो बस वक्त की कमी के बायस अगर ना हो सके तो वो अलग बात है। अभी जाएंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
1: It's 12 midnight. This time check is brought to you by FPSL Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत। This program was brought to you by FPSL Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
0: Welcome back। अच्छा भाई इजाज खान आ गए हैं और सलाम के बाद कह रहे हैं कि अरे भाई उम्मीद आरजू है कि आप खुशबू की तरह महकते रहे, आमीन। हाई सो स्वीट इजाज खान। क्या बात है भाई। और अने भाई सलाम, कैसे हैं आप? क्या आप नाराज हैं हमसे? कोई गलती हो गई है हमसे? आज कल हमारे मैसेजेस रीड नहीं हो रहे? अनीस भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मैसेज मेरे सामने आया हो। आए हाय, अभी यहीं थे जनाब, हमारे शोभी भाई आ गए हैं, द ग्रेट अजमल शोभी भाई, उनको आप सुनेंगे, उनकी बात का जवाब दे रहा था। तो अभी अनीस भाई आपकी जानिब भी आ रहा हूं, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी नजरों से कोई ऐसा मैसेज नहीं। हाँ, अगर इंटरनेट के थ्रू या किसी भी वजह के थ्रू मैसेज यहां तक ना पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन आप हमारे दिल में हैं मेरे शहजादे, आपका हर मैसेज शामिल होता है। अमीन कह रहे हैं कि अंधेरी रात में रहते तो अच्छा था, हम अपनी जात में रहते तो अच्छा था, बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें दुखों ने, तुम्हारे हाथ ही में रहते तो अच्छा था। क्या बात है मीन भाई, इतनी शायरी हो रही है, खैरियत तो है। पाकिस्तान बाजार से हमारी प्यारी सी बहन रेहाना आ गई है, उन्हें कह रही है सलाम के बाद अब ढेर सारी दुआएं। भाई लास्ट फरमाइश है नूरजहां के पंजाबी सॉन्ग लगा दें। चले जनाब लास्ट में हम चला देंगे, बिल्कुल हो सकता है कि बीच में भी चला दें मेरी प्यारी सी बहना, लेकिन गाना तलाश करना पड़ता है आपका, यानी कि समझ रही है ना आप। नदीम भाई मैं यही सुनना चाहता था साहबजादा साहब, भाई जाहिर है कारोबारी आदमी है, सेठ आदमी है भाई, आप क्यों यही सुनना चाहते थे कि आप सोच रहे थे कि कुछ और बोलूंगा? जरा बताइएगा क्या सूरत हाल है। अरे यार संजू के इतने सारे प्यारे प्यारे से मैसेज, उफ अल्लाह जी, लेकिन संजू के मैसेज अब ये हम नहीं पढ़ेंगे। पहले जो है नौरीन बहना ने एक कथा जो उनको डेडिकेट किया है, लेकिन कथा भी नहीं चला है, पढ़ेंगे कथा जो है हम गाने के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो संजू के मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि वाह वाह वाह, एक शेर है उसकी तशरीह भी भेजिए, कहती है मैं तस्वीर से हूं मुतमईन मगर आरजू है तू रूबरू आए। आए हाय हाय, शायरी शेर में खामखा की ड्रामेबाजी कर रहा है, सीधा नहीं कह सकता कि वीडियो कॉल कर लो। आजकल तो ऐसा ही है वैसे, उस शौरा जो थे पुराने वो तो ऐसे ही कहेंगे ना। और हाय शुक्रन रुहमन और प्यारी जरीन नूर, जबरदस्त सॉन्ग, आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। और रुहमन, खुशबू से इश्क है मेरे रूम में, कबर्ड हर वक्त एक मीठी सी खुशबू से महकता है, रात सोने के अगर मोतिया के फूल हों तो रूम में होते, वरना गुलाब की पत्तियां तो होती हैं। क्या बात है यार, परफ्यूम आज तक एक ही है जो मेरी पहचान है। क्या बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दो तीन चीजें इसमें आ गई हैं, क्योंकि मोतिये के फूल का जब इन्होंने जिक्र किया ना तो मुझे अम्मी याद आ गई।

वेलकम बैक। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढना मिलेगा। देखिए कैसा गाना डेडिकेट किया साहबजादा साहब अमीर भाई, और उसके साथ साथ हमारे प्यारे से अनिल साहब, इजाज साहब, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा भाई, मैसेज मैं पढ़ रहा था संजू के, तो कह रहे सैया जी तेनु को संभाई मेरे रूहे मन हाय, शुक्रिया रीला बच्चा। अच्छा अच्छा, वो सैया जी के नैनो में गाना चलाया ना, सैया जी के नैनो को संभाले, वाह वाह वाह। अदीला का शुक्रिया अदा किया है। और हाय रूहे जान कहने वाली प्यारी नौरीन बहना, फिल्मी नहीं है, अमीन चार्ली भाई भाई रहे और जीते रहे वो कह रही है। और जनाब आगे बढ़ते हैं। सुमैया कहती हैं पता नहीं फिल्म का क्या है नाम, मुझे अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। शोभी भाई को हम कह देंगे, शोभी भाई को भी हमारा सलाम खैरियत। आज काफी टाइम बाद आप दोनों आरजे को सुन लेंगे, ठीक है मेरी प्यारी सी मैं ना, आप बेफिक्र हैं, हम शोभी भाई को बोलेंगे कि आपके लिए गाना ढूंढ कर निकाल दीजिए। हैं जी हैं जी, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। और अखबार खाना दिलबर जाना कहते हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि मैंने बड़े प्यार से बेगम से पूछा, तुम्हें खूबसूरत खामन चाहिए या अकलमंद? कहने लगी दोनों ही नहीं। आप ठीक हैं। वही मजा आ गया भाई, अकबर भाई यूसुफी साहब कमाल है भाई, कमाल है। देखिए बात वो है जो यकीन माने, जिस पर वाकई लाफ्टर आ जाए, क्या बात है यार, बहुत खूब भाई। अकबर खाना आज आप नंबर ले गए हो फुल टाइम, यूसुफी साहब के दो जो है इकतबास आपने मतलब चुटकुले ही समझे, लेकिन क्या अंदाज है इनका भाई, जबरदस्त जबरदस्त। और जबरदस्त यूसुफी साहब संजू कह रही हैं, और उसके साथ साथ अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मैसेज को शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हैं आप। चले जनाब इसी बात पर हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से कथा की जानेब, लेकिन उसके साथ साथ हाँ गाना भी हमने ढूंढ लिया है जनाब। तो हमारी प्यारी सी नौरीन बहना ने कहा किनको जनाब, संजू के लिए एक कथा उन्होंने भेजा है। हुस्न तेरा चांद से भी हसीन लगता है, हुस्न तेरा चांद से भी हसीन लगता है, तेरा चेहरा फूलों की तरह दिल नशीन लगता है, तेरी एक मुस्कुराहट दिल को छू जाती है, तू सामने हो तो हर मंजर हसीन लगता है।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो टू मोहब्बत ब्यूटीफुल ट्रैक। और संजू ने कहा हाय प्यारी नौरीन बहना, शम्मो आ गई इतने जबरदस्त कथा और सॉन्ग के लिए, शुक्रिया। और जनाब सलाम नदीम भाई, मैं सनम हूँ, कल एक पश्तो सॉन्ग के लिए लगाने के लिए बोला था पर मैं सो गई थी। लो अब आप सो गई थी, अब आप पर जुर्माना होगा, हमने गाना चलाया था, मैं नहीं सुन पाई। क्या आपने चलाया था? और एक गाना आज चला दे गाना के बोल हैं प्यार की याद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पाकिस्तानी मूवी का ही गाना सनम, ये बात अच्छी लगती है मुझे। उस पर फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यार चला दें या ना चलाएं, यानी कि प्यार की याद। चले जनाब, अनीस भाई कह रहे हैं कि अने भाई थैंक यू फॉर द सॉन्ग, नाइस सॉन्ग, मोतिये की खुशबू मुझे भी पसंद है। हाँ, उस पर अभी चर्चा करेंगे, संजू का जो मैसेज आया था। सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलिया है 2013 में, 7 का S7 का सेंट नोट मशहूर हुआ था जिसमें वॉडल फ्लावर की खुशबू होने का क्लेम था, लेकिन ये ऑफिशियल करेंसी नहीं थी। जरीन नूर कह रही है मेरी प्यारी बहना, देखो उस वक्त से जो है ना इस चक्रों में लगी हुई है मेरी प्यारी सी बहन, इतने जवाब दे चुकी हो जरीन नूर, तो बस ये आपकी पार्टिसिपेशन दिल से कबूल है। अभी हम आपको बताएंगे ना एंड में एक सॉन्ग बहुत डेडिकेट। अच्छा, सलीम मेमन साहब का आया भाई, आए वाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं। सलीम मेमन साहब का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, मैं भूल ना जाऊंगा, क्योंकि भाभी के लिए डेडिकेट हुआ है भाई मिसेस सलीम मेमन को, तो यानी कि समझ रहे ना। और जनाब इन्होंने साहबजादा साहब का मैसेज आया, नदीम भाई मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, बॉस अपने साथ टोक्यो जापान लेकर गए। वाह वाह, हमारे साथ खेल रहे थे। टोक्यो एयरपोर्ट से होटल के लिए टैक्सी किए, बॉस आगे बैठे, जूस का डब्बा उनके हाथ में था, खाली उन्हें पर अच्छा, उसके बाद वो खाली करके उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी, रिवर्स करके खामोशी से टैक्सी से उतरा, डब्बा डस्टबिन में डाला, खामोशी से टैक्सी में वापस आया और टैक्सी ड्राइव करने लगा। मुझे ऐसा लगा शर्मिंदगी की दलदल में डूब गया हूँ। साहबजादा साहब, ये देखें ये कौमें होती हैं। आप जो है माशाल्लाह टोक्यो गए जापान, और जापान तो इस हवाले से मशहूर है। देखें उसने ना कोई गाली दी, ना कोई गलोच की, ना बुरा भला का, क्या खूबसूरत अंदाज से उसने शर्म से पानी पानी कर दिया। मैं यकीन के उसके इस अमल से पता क्या हुआ होगा, आप और आपके बॉस दोनों को एक सबक मिला और आपने ये काम आइंदा कभी नहीं करना। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान होता और आपकी लड़ाई हो जाती, जबान नहीं होता या जबान में ही आपकी लड़ाई हो जाती और गालम गलोच होती और फुल फड्डा शड्डा, तो ये बात आप भूल जाते, एक वक्त ऐसा आता भूल जाते। लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने जो सबक दिया है, उस सबक से जो है ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा और आप ऐसा अमल दोबारा नहीं करेंगे। ये बात बड़ी जबरदस्त है और हमें भी अपने अमल ऐसे रखने चाहिए। हमारे साहबजादा साहब गुफरान भाई आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये खूबसूरत सी चाय का। और गुफरान भाई को मैं ये बात दोबारा, मुझे बहुत माजरत आपसे कि बताना चाह रहा हूँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं आपको बताएंगे अभी। तो साहबजादा साहब ने एक बड़ा अच्छा वाकया बताया, उन्होंने बोला कि मैं एक जॉब कंपनी में जॉब करता हूँ और अपने बॉस के साथ मैं टोक्यो गया, तो जब हम एयरपोर्ट से उतरे टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बॉस जो है वो उन्होंने जूस का डब्बा भी दे दिया, तो टैक्सी चल रही है जूस, नहीं नहीं नहीं खुद पी रहे थे और खुद भी पी रहे थे। डब्बा जब खाली हो गया तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। और जब वो बाहर फेंक दिया तो टैक्सी ड्राइवर ने देखा, उसने गाड़ी रोक दी। उसके बाद गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स की, कह रहा है टैक्सी से उतरा, डब्बा उठाया, डस्टबिन में डाला, वापस आया, टैक्सी में बैठा और चल पड़ा। कह रहा है उसके इस अमल से ऐसा लग रहा था शर्मिंदगी के दलदल में हम लोग धस गए। तो ये अमल ऐसे कौमें करती हैं, ऐसे अमल कि ये इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सल्यूट कर रहे हैं वो उस टैक्सी ड्राइवर को, यानी कि समझ रहे ना इस तरह तो होता है, इस तरह के काम
1: क्या होता था, गालियां अलग देता, मारता अलग।
0: ये मैं यही बात कर रहा था, मैं बहुत तमीज के दायरे में। लेकिन ये अभी यार एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा यार, क्या खूबसूरत किस्म की बातें मेरे सामने आई हैं। अकबर खान ने यूसुफी साहब के कुछ मुझे खताए भेजे हैं,
1: फूल गुलदस्ते,
0: और वो जो है ना मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। एक ही छोटा सा जो है, ये कहते हैं कि मैंने बड़े प्यार से, अब मुश्ताक यूसुफी साहब कहते हैं कि मैंने बड़े प्यार से अपनी बेगम से पूछा, तुम्हें खूबसूरत खावन चाहिए था या अकलमंद? तो बेगम कहने लगी, दोनों ही नहीं, आप ठीक। यानी कि समझ रहे ना, ये उस टैक्सी ड्राइवर जैसी हरकत थी ये।
1: जी बोला किसने छेड़ने के लिए,
0: वाह वाह, बेगम को नहीं छेड़ना चाहिए, सही कहा इसने। चले जनाब इसी बात पर, यार वैसे मैं सोच ये रहा हूं कि गाने वो वाले चलाऊं जो कि आप लोगों की फरमाइशें हों। तो हमारे प्यारे से एक लिसनर हैं, उन्होंने एक फरमाइश की हुई है, तो वो फरमाइश जो है वो हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन मैं चाह रहा था बातों बातों में वो फरमाइश मैं ढूंढ पाऊं। अगर ऐसा हो गया तो वो फरमाइश फौरन चल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो यानी कि समझ रहे हैं ना, बाद में चलेगी वो फरमाइश। असल में है हमारे प्यारे से सलीम मेमन साहब। सलीम मेमन साहब ये ट्रैक डेडिकेट करना चाह रहे हैं अपनी प्यारी सी वाइफ को। तो अगर भाभी सुन रही हैं मिसेस सलीम मेमन, तो उनके उनको ये ट्रैक डेडिकेट हो रहा है जनाब उनके प्यारे से हस्बैंड की जानिब से। एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, भाभी की इतनी तारीफें हो रही हैं, जरूर भाभी ने जो है आज धमकाया होगा सलीम मेमन साहब। सलीम मेमन भाई ने सोचा कि भाई क्यों ना भाभी को गाना डेडिकेट कर दिया जाए, खुश हो कि जान बख्श दे हो। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, अकबर खान कह रहे हैं खुशबूदार करेंसी नोटों के हवाले से दुनिया में काकिस्तान। अच्छा मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं, काजिकस्तान काजिकस्तान काजिकिस्तान समझ में आ रहा है,
1: कर्गिस्तान
0: कजाकिस्तान यस कजाकिस्तान, ये मुल्क हैं कजाकिस्तान के हवाले से। अब तो मैं बिल्कुल सही बोल दूंगा,
1: ये मुझे इसके नाम जो है वो है,
0: हाँ वो है
1: प्रोनाउंस में अच्छे मेरे।
0: क्या आप ये बोलते हैं जुबान,
1: पठान का होटल है वो, उसने ये तीन चार नाम चेंज किए हैं
0: कजाकिस्तान। खैर जी उन्होंने बोला सबसे ज्यादा मशहूर है जहाँ बाकायदा तौर पर मार्केट में खुशबूदार नोट गर्दिश करते हैं, और साल 2019 में कजाकिस्तान के एक निजी बैंक ने ख्वातीन ताजरों की हौसला अफजाई के लिए एक मुहिम चलाई, उन्होंने ये एक खास परफ्यूम तैयार किया और कारोबारी ख्वातीन को दिया ताकि वो अपने पास मौजूद करेंसी नोटों पर ये खुशबू छिड़कें। जब ये नोट बैंक और एटीएम्स के जरिए पूरे मुल्क में फैल गए तो लोग नोटों से आने वाली खुशबू देखकर हैरान रह गए। भाई ये अकबर खान ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो ये मैसेज भेजा। अच्छा अकबर खान का एक और, क्योंकि हमारे उफरान भाई यहां पर बैठे हैं तो इन्होंने एक और बहुत जबरदस्त मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का मैंने खुद हल्का किया है। भाईजान यहां पता चल जाए आपको यकीन माने कौन कौन सी चीज जो है वो जम जाती है आपको पता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो इसका जो आप लोगों ने तो ये इसको डायरेक्ट जो है वो रखा हुआ था भाई, एसी की बात कर रहा हूं। खैर आप कर सकते हैं तो आपको एक और सुना रहा हूं, ये हमारे लिसनर्स तो अपनी जगह सुनते ही हैं लेकिन आप भी हमारे प्यारे से दोस्त हैं। तो यूसुफी साहब फरमाते हैं कि मैंने बस में बराबर की सीट पर बैठी एक खूबसूरत खातून से पूछा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूं जो आपने लगाया हुआ है?
1: पंजाब में घूम रहे,
0: उसकी खुशबू जबरदस्त है, मैं अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता हूं। उस खातून ने जवाब दिया, आप ये परफ्यूम हरगिज अपनी बीवी को ना दीजिएगा, वगरना हर जलील इंसान को उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। यार क्या कमाल है यार यूसुफी साहब की तहरीर में, तो मुझे बड़ा मजा आया था।
1: ये एक्सपीरियंसेस हैं।
0: खैर जी आगे बढ़ते हैं, संजू क्या कह रही हैं? बेहतरीन बात टैक्सी वाली साहब ज्यादा साहब के लिए, जबरदस्त शो हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आज मैं जो है रूहमन कुछ अपनी बातें भी ऐसे ही बीच में इधर उधर की कर रहा हूं, अभी खुशबू के हवाले से मैंने कुछ कहा नहीं है। और सुमैया कह रही हैं बहना कि ओके एने भाई अब हम जा रहे हैं बिकॉज क्लासेस का टाइम हो रहा है। जीती रहो मेरी प्यारी सी बहन, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत अरसे के बाद एंट्री मारी है आपने, और शोभी भाई वैसे अभी आएंगे तो आपका गाना जो है शोभी भाई को हम बताएंगे, तो हो सकता है शोभी भाई अपने शो में चला ले। नवीद कह रहे हैं कि नदीम भाई सॉन्ग आपका स्मॉल भाई। और साहबजादा साहब कह रहे हैं पुरानी बात है, साहबजादा साहब अगर आप आज भी चले जाएंगे ना टोक्यो में या जापान में तो वहां आज भी कुछ ऐसा ही सिलसिला कार है, क्योंकि जापान दुनिया के उन मुल्कों में आता है जहां पर क्राइम रेट सबसे कम है, सबसे कम जापान में, मतलब कुछ उसके हवाले से। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर किसी मॉल में किसी शॉप पर या किसी बस स्टैंड पर अपना कोई सामान अगर भूल गए हैं तो अगर आप वहां पर दो चार घंटे के बाद भी जाएंगे तो आपको वहीं पर पड़ा मिलेगा, और अगर वो वहां पर मौजूद नहीं हुआ तो उस इलाके के पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां के लोग ऐसे हैं, अभी भी, और अपना काम खुद करते हैं। और बच्चों को एक स्पेशल तालीम दी जाती है जापान में गुफरान भाई, कि एक बच्चों को तो खैर वो ये सिलसिला तो होता ही है ना कि पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई तो हो रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा मुख्तस किया जाता है बच्चों के लिए कि जिसमें स्कूल के तमाम बच्चे स्कूल की सफाई करते हैं, जिसमें झाड़ू भी देते हैं, पोछा भी लगाते हैं, डस्टिंग भी करते हैं। ये तमाम एक तरबियत का हिस्सा बनाया जाता है बच्चों की तालीम में कि वो किस तरीके से जो है ये। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी,
1: मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक और बड़ा अच्छा उनका स्टेप
0: और
1: है, एक और स्टेप है स्कूल में बच्चों को लेकर, जो हम लोग सुनेंगे ना कभी भी तो हम लोग हैरान हो जाएंगे।
0: जी जी,
1: वो स्टेप ये है कि उनको एक घंटे का नैप दिया जाता है।
0: जी
1: जी जी, क्लासेस
0: हाँ,
1: कि बच्चा जो है वो रिलैक्स हो जाए, सो जाए।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: यहाँ पे अगर आप किसी को बताएंगे तो हैरान है
0: बच्चों। अबे डंडा मार के उठाते हैं भाई बच्चों को, डंडा अगर कोई बच्चा बिचारा, मिसाल के तौर नैप से मुराद ये है कि सोने का टाइम, कहलूला जिसको हम कहते हैं हम अपने उर्दू में, वो बच्चों को दिया जाता है और वो बच्चे जो हैं वो एक घंटा जो है वो आराम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर उनको रिफ्रेश किया जाता है बच्चों को। खैर जापान की क्या मिसाल दें आपको, जापान तो जापान है ना भाई, वो जापान तो जापान है भाई, जन इसे बात पर हम गाने की जानब जाएगा। और आपकी बातों की वजह से शो में रौनक है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया संजू। ओ ये भोपाल से है भोपाल से है। अच्छा जनाब, अच्छा मैंने नेक्स्ट लिंक में जो है वो चर्चा भी करनी है। अच्छा ये कौन सा मैसेज है भाई? हाँ साहब, टोक्यो वाला मैसेज था वो, मैंने कहा इतना बड़ा मैसेज ये पढ़ भी चुका हूं मैं। तो जनाब अभी बढ़ते हैं एक ट्रैक की जानिब। अच्छा डेडिकेशन पहले मैं देख लूं। हाय एस गुल ने कहा था नदीम भाई अपनी आवाज में, यार मेरी आवाज में मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे अगर इजाजत दे दी हमारे प्यारे से जो है गुफरान भाई ने, तो शायद मैं सुना दूं। गुफरान भाई बेसुरा हो जाऊंगा मैं, गाने हैं कोई, वो कह रहे हैं कोई गा दो, पाकिस्तानी गाने हैं। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, मुझे पूरा सर याद नहीं है, मुझे सही तरह चला दूं अगर बेसुरा हो गया तो। ट्राई करूं भाई, कह दिया उन्होंने तो फिर सबा गुल की जानिब से हम ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं कि इनको जनाब।
1: हाँ मेहंदी साहब की क्या बात है,
0: क्या बात है, ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं जो अयूब लाला को सबा गुल की जानिब से हमारी आवाज में, और उसके साथ साथ जिंदगी आपके लिए भी।

पहली बार भाई इतना ही बहुत है। उमरान भाई ने ओके कर दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको भी शायद शायद पसंद आया होगा। यकीन मानिए फर्स्ट टाइम ये गाया है और उम्मीद करता हूं अगली बार से प्रैक्टिस करूंगा, इस बार हो सकता है अच्छा गा लूं।

0: वेलकम बैक कहेंगे। सुनो क्या बात है अकबर खान, क्या नॉलेज है आपको यार। ये आपने जितनी भी बातें बताई हैं दुरुस्त बताई हैं, लेकिन लोगों को खुशबू मैपल की आती थी, ये फैक्ट है। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है जनाब, और खुशबू के हवाले से जो है वो बातें हुई और जिंदगी कह रही है जिंदगी तरफ के। अच्छा नहीं, जिंदगी का मैसेज ही नहीं आया भाई, ये मैं पुराने मैसेज देख रहा था क्योंकि हमारे अमीन भाई की फरमाइश अभी रहती है। और जरीन नूर मेरी बहना कहती हैं कि मुझे जैस्मिन की खुशबू पसंद है। बेशक बड़ी प्यारी खुशबू है, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और क्या लिखा हुआ है जनाब, अमीन कह रहे हैं कि नदीम भाई सैटरडे हफ्ते की रात आपका ऑफ होता है, मेरी राय है गफरान भाई के लिए वो सैटरडे को शो कर लिया करें। कर सकते हैं क्योंकि शैगी भाई भी करते हैं शो। वो कह रहे हैं कि सैटरडे को करते हैं शैगी साहब क्या? नहीं, वो तो बुध वाले दिन करते हैं, कल करेंगे वो इंशाल्लाह। खैर आपके लिए है कि आप सैटरडे को शो कर लिया करें।
1: हाँ, उनको रिकॉर्ड करके सुनते।
0: तो खुशबू के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो। हाय हाय, हाँ याद आ गया जो बात मैं करना चाह रहा था। देखो चाय भी ठंडी हो गई भरपूर तरीके से। संजू ने एक और बात पूछी थी कि कौन सी खुशबू। भाई वैसे पहले दौर में पहले ऐसा होता था, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी ऐसा होता होगा कि आप अगर किसी को खत भेजते थे तो उसके ऊपर भी परफ्यूम छिड़क कर और पहचान बन जाती है खुशबू, है जी। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लोग संभाल के रखते थे। आजकल क्या ऐसा होता है, अब वक्त नहीं रहा, वरना इस पर ऐसी बेहतरीन चर्चा होती ना कि मजा आ जाता। चले खुशबू के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे जुमेरात वाले शो में। फिलहाल आपसे चाहेंगे हम इजाजत, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात जो है हमारी जनाब वो होगी कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। और जाते जाते अमीन भाई ने इखलाक अहमद की आवाज में संजू को ट्रैक डेडिकेट करने की के लिए कहा था, तो अब जो भी गाना है भाई इखलाक अहमद का मिला है वो हम चला रहे हैं। गाना बड़ा जबरदस्त है, तो इसको इसके बोलों की वजह से नहीं परखा जाए, गाना बहुत अच्छा है भाई। तो ये ट्रैक अमीन की जानिब से संजू के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

कलाम था ये शकील हैदर साहब का, आवाज थी सोनोली की और बड़ी खूबसूरत सी क्लासिक सी आवाज है, और उसके साथ साथ फिर इनका अंदाज, गाने का जो अंदाज है वो भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि हर गजलें अगर देखा जाए तो गजल का जो अंदाज है वो एक अलग ही अंदाज है, और गजल का मूड अलग होता है, टेम्पो अलग होता है, अंदाज अलग होता है, लफ्जों का उठाना, उनको पिरोना, फिर उनको एक लय में लाना और आवाज के साथ मैच करना, ये बड़ा बहुत बड़ा काम होता है गजल की गायकी में। खास तौर पे पॉप म्यूजिक में तो आपको देखे बस म्यूजिक के साथ जो है वो आप अपनी आवाज को मिलाएं और बस गाते रहे, टेंशन नहीं है आपकी, क्योंकि वहां म्यूजिक ज्यादा होता है और सिंगर की आवाज थोड़ा कम होती है, मगर गजल में, गीत और गजल में सिंगर की आवाज ज्यादा होती है, म्यूजिक बहुत पीछे होता है और हल्का होता है, लाइट सब म्यूजिक होता है, तो इसलिए वहां पर आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज का टेम्पो, ये तमाम चीजें जो है ये बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा गौरतलब भी होती है, इसीलिए गजल की गायकी और पॉप म्यूजिक को इसीलिए एक साथ नहीं जोड़ते कभी भी। वक्त 1:22 हो चुके हैं और FM इंडिया पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आप सबको मैं खुश आमदीद कहूंगा FM इंडिया पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। प्रोग्राम तो रेडियो पर तो आप सुन ही रहे हैं, आपको पता है कि आप रेडियो पर प्रोग्राम सुन रहे हैं FM इंडिया पर, और अगर प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पर आना चाहें तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो पर, आप यकीनन, और उसके लिए आपको आना होगा यूट्यूब पर, MAKS HDTV आप लिखेंगे तो यकीनन जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी लाइव वीडियो आपके सामने मौजूद होगी और आप अपने लाइव कमेंट्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। और जनाब खिताब लाला का मैसेज बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच गया है, और जनाब कहते हैं कि गुड नाइट सर, थैंक यू, मेरा मेरी तरफ से बड़े साहब को सलाम, अलीमुद्दीन यूसुफ जई भाई को मेरे संत बोरियो को सलाम। चले बहुत शुक्रिया खिताब लाला, आपकी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें सलामत रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं और आपको सलाम यकीन मीर हसन बरोही और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब तक यकीनन वो सुन रहे होंगे तो जरूर पहुंच गया होगा, और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे, इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा हमारा बिल्कुल। और अब आते हैं एक खूबसूरत से कलाम की जानिब, और ये कलाम जो मैं शामिल करना चाह रहा हूं मैं, ये कलाम कुछ अलग है, और मगर इससे पहले हम यूं करते हैं कि शामिल करते हैं आवाज़,

आवाज इमरान सहर की, और इमरान सहर आपको पता है कि मैं वैसे एक अच्छा हो गया पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में होते तो जरूर इनको हम अपने प्रोग्राम में कब तक बुला चुके, बहुत पहले आए थे जब पाकिस्तान में थे, मगर आएंगे तो इंशाल्लाह आएंगे तो जरूर प्रोग्राम में भी इनको बुलाएंगे, और कुछ मेरी तो गजलें भी इन्होंने और गानी है, एक गजल तो आप मेरी सुनते हैं इनकी आवाज में। और जनाब वक्त 1:35 हो चुके हैं, और जनाब इस वक्त हमें तानिया जो है वो हमें तानिया सन हमें सुन रही हैं, और कहती है सलाम शो साहब आज का शो बहुत खूबसूरत जा रहा है, शायरी और गजल का तो जवाब ही नहीं है। चले बहुत बहुत शुक्रिया भाई तानिया सन आपका, आपकी वापसों का थैंक यू जजाकल्ला। और उसके साथ साथ समी बलोच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद, वो भी हमें सुन रही है, कहती है सलाम वालेकुम सलाम जी, और शो अच्छा जा रहा है, थैंक यू समरी। और तमाम ही सुनने वालों को सलाम, तमाम सुनने वालों का आपका सलाम बिल्कुल पहुंचा दिया बिल्कुल, और सबकी जानिब से वालेकुम सलाम, और मेरी जानिब से वालेकुम सलाम। तेरी खुशबू मेरी सांसों में बिखर जाती है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में बिखर जाती है, याद जब दिल के समुन्दर में उतर जाती है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में बिखर जाती है, याद जब दिल के समुन्दर में उतर जाती है, जी में आता है तेरा नाम पुकारूं हर सू, जी में आता है तेरा नाम पुकारूं हर सू, जाते जाते मेरी आवाज ठहर जाती है, जी में आता है तेरा नाम पुकारूं हर सू, जाते जाते मेरी आवाज ठहर जाती है, रोज लिखती हूं तेरे नाम, रोज लिखती हूं तेरे नाम से खत रो रोकर, रोज लिखती हूं तेरे नाम से खत रो रोकर, रेल रुकती नहीं जो तेरी नगर जाती है, रेल रुकती नहीं जो तेरी नगर जाती है, आज दुल्हन बनी जज्बात मेरी उल्फत में, आज दुल्हन बनी जज्बात मेरी उल्फत में, कभी डोली तो कभी घर पे नजर जाती है, कभी डोली तो कभी घर पे नजर जाती है, मेरी किस्मत के सितारे नहीं मिलते उससे, मेरी किस्मत के सितारे नहीं मिलते उससे, वरना डूबी हुई कश्ती भी उभर आती है, मेरी किस्मत के सितारे नहीं मिलते उससे, मेरी किस्मत के सितारे नहीं मिलते उससे, वरना डूबी हुई कश्ती भी उभर आती है, डूबने लगता है जब दिल का सफीना मेरा, डूबने लगता है जब दिल का सफीना मेरा, बन के नगमा कोई नुजहत, बन के नगमा कोई नुजहत तो बिखर जाती है, बन के नगमा तो कोई नुजहत बिखर जाती है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में बिखर जाती है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में बिखर जाती है, याद जब दिल के समंदर में उतर जाती है, जी में आता है तेरा नाम पुकारू हर सू, जाते जाते मेरी आवाज ठहर जाती है, जाते जाते मेरी आवाज ठहर जाती है। और अब शामिल करते हैं आवाज हुमैरा चन्ना की।

आवाज आप सुनते अभी टीना सानी की, बड़ी क्लासिक गजल है टीना सानी की आवाज में, कड़ी नीम के नीचे। मैं खुद जमीन हूं मगर ज़र्फ आसमान का है, मैं खुद जमीन हूं मगर ज़र्फ आसमान का है कि

और जनाब इसके बाद अब शामिल करते हैं आवाज उस्ताद हामिद अली खान साहब की।

वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। आमिर इकबाल ने हमें जवान किया, यूट्यूब पर मौजूद हमारे साथ थे और कहते हैं सलामुलिक वालेकुम सलाम आमिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू, जजाकल्ला, आप खुश रहें, सलामत रहें। उसके साथ साथ खुर्रम सलीम कहते हैं जबरदस्त जी, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ फिर जनाब खुर्रम सलीम क्या कहते हैं, तुम्हारी हंसी में मेरी सुबह है, तुम्हारी बातों में मेरी शाम है, तुमसे ही तो मेरी जिंदगी का नाम है, तुम ना हो तो हर खुशी बेनाम है। क्या बात है भाई, तुम्हारी आंखों में जब से खुद को देखा है, दिल ने कहा है कि बस तुम्हारा हो गया हूं, तुम पास हो तो हर लम्हा जन्नत सा लगता है, तुम हो रहे हो तो तुम दूर हो तो हर सांस अधूरी लगती है। क्या बात है भाई, बड़े खूबसूरत, कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आप, क्या बात है, थैंक यू भाई, बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ साथ फिर जनाब खुर्रम सलीम जनाब कहते हैं अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, बिल्कुल देखेंगे, वक्त की मुनासिबत से हुआ तो फिर शामिल करेंगे जरूर। बहरहाल आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद, थैंक यू, जजाकल्ला, और आप सबको मैं खुश आमदीद। साहिबजादा साहब भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, कहते हैं शोभी भाई अल्लाह पाक आपको जिंदगी अता करें, आमीन, जजाकल्ला साहिबजादा, बस दुआओं में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं का हमेशा से मोहताज हूँ और हमेशा रहूंगा, क्या जिंदगी रहे ना रहे, दुआएं तो फिर भी कहते हैं नहीं होंगे, दुआएं उस वक्त ज्यादा काम आएंगे हमारे, तो बस अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा हमें जरूर, जिंदगी का क्या पता है कब वफा करे और कब बेवफाई करे और छोड़ के चली जाए, कोई पता नहीं जिंदगी का, लम्हे कहते आने वाले किसी पल का पता नहीं कि क्या होने वाला है। और जनाब अब इसके बाद एक खूबसूरत से गजल के चंद अशआर, इसकी शायरा हैं रजिया सुभान साहिबा, और कहती हैं कि मुझे तुम बेवफा लगते नहीं हो, मुझे तुम बेवफा लगते नहीं हो, जुदा होकर जुदा लगते नहीं हो, मुझे तुम बेवफा लगते नहीं हो, जुदा होकर जुदा लगते नहीं हो, रुखे आरिस पे कितने रंग आए, रुखे आरिस पे कितने रंग आए, खफा होकर खफा लगते नहीं हो, खफा होकर खफा लगते नहीं हो, मैं कैसे मान लूं मेरा सहारा, मैं कैसे मान लूं मेरा सहारा, कि दिल का आसरा लगते नहीं हो, कि दिल का आसरा लगते नहीं हो, बहुत खामोश है बज़्मे तमन्ना, बहुत खामोश है बज़्मे तमन्ना, मोहब्बत की सदा लगते नहीं हो, बहुत खामोश है बज़्मे तमन्ना, मोहब्बत की सदा लगती नहीं हो, है दावा पारसाई का तुम्हारा, है दावा पारसाई का तुम्हारा, कहीं से पारसा लगते नहीं हो, कहीं से पारसा लगते नहीं हो, सरिश्त आदमियत एक जैसी, सरिश्त आदमियत एक जैसी, जहां से मावरा लगते नहीं हो, जहां से मावरा लगते नहीं हो, मुझे तुम बेवफा लगते नहीं हो, जुदा होकर जुदा लगते नहीं हो, रुखे आरिस पे कितने रंग आए, रुखे आरिस पे कितने रंग आए, खफा होकर खफा होकर खफा लगते नहीं हो, मैं कैसे मान लूं मेरा सहारा, मैं कैसे मान लूं मेरा सहारा, कि दिल का आसरा लगते नहीं हो, कि दिल का आसरा लगते नहीं हो,

0: जंगल होगा।
1: रक्त में सारा जंगली होगा। मसूद मलिक की आवाज में एक बड़ी सुपर क्लासिक गजल अपने वक्त की बड़ी खामियां भरी है। वो देखें अब ये वही कलाम है, वही आवाजें हैं, वही खूबसूरत आवाजें और सिंगर म्यूजिशियन के इन कलामों को बने हुए, इन गजलों को गाए हुए भी 50-50 साल गुजर चुके, मगर आज भी हम सुनते तो वैसे ही रखते जैसे आज ही की बात है, आज ही की आवाज है, आज ही की गजल है, आज ही बनी होगी, मगर बहुत तवील सफर के बाद ये खूबसूरत आवाज हम तक पहुंची है। हम समुंदर की तरह जर्फ वसी रखते हैं, हम समुंदर की तरह जर्फ वसी रखते हैं, दिल में हो लाख तूफान तो चेहरे पे सकून रखते हैं। ये खूबसूरत शेर हमें भेजा है हुमा ने, और उसके बाद आते हैं एक और खूबसूरत से कलाम की जानिब, और खुर्रम सलीम कहते हैं बहुत खूब शोभे भाई, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और इसके साथ साथ एक खूबसूरत गजल के चंद अशआर में शामिल करूंगा, और ये कलाम है तशफीन फारूकी की का लिखा हुआ कलाम है। तशफीन हमारे नौजवान नस्ल की एक बड़ी अच्छी शायरा हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हैं, कम लिखती हैं, एक किताब माशाल्लाह साहिबी किताब है तशफीन फारूकी लिखती हैं, और कहती हैं कि ये मेरी गजल उन तमाम परदेसियों के लिए कि जो न सिर्फ वतनी अजीज से दूर हैं बल्कि अपने प्यारों के लफ्ज को भी तरसते हैं। कहती हैं इसमें कि परदेस में एक मां का दुलारा चला गया, परदेस में एक मां का दुलारा चला गया, घर भर की था जो आंख का तारा चला गया, परदेश में एक मां का दुलारा चला गया, घर भर की था जो आंख का तारा चला गया, बचपन की मोहल्ले को गलियों को छोड़कर, बचपन के मोहल्ले को गलियों को छोड़कर, सब दोस्त कह रहे हैं कि यारा चला गया, सब दोस्त कह रहे हैं कि यारा चला गया, हंस हंस के जो लाड बिठाता था हर घड़ी, हंस हंस के जो लाड बिठाता था हर घड़ी, बहनों पे धूप छांव का वो जाड़ा चला गया, बहनों पे वो धूप छांव का जाड़ा चला गया, अब वतन में आएगा वो शायद किसी बरस, अब वतन में आएगा वो शायद किसी बरस, यूं लग रहा है सारे का सारा चला गया, यूं लग रहा है कि सारे का सारा चला गया, बचपन है उसके फोन की घंटी बजती है, उसके फोन की घंटी कभी कभी बजती है, उसके फोन की घंटी कभी कभी, पैसे तो मिल रहे हैं सहारा चला गया, पैसे तो मिल रहे हैं सहारा चला गया, चुपके से कल सुना है मैंने आंसुओं के बीच, चुपके से कल सुना है मैंने आंसुओं के बीच, बाबा भी कह रहे थे कि प्यारा चला गया, बाबा भी कह रहे थे कि प्यारा चला गया, मरने की मेरी खबर पे वो भाग दौड़ कर, मरने की मेरी खबर पे वो भाग दौड़ कर आया था एक बार, आया था एक बार दोबारा चला गया, आया था एक बार दोबारा चला गया, परदेश में एक मां का तारा चला गया, परदेश में एक मां का दुलारा चला गया, घर भर की था जो आंख का तारा चला गया, बचपन के मोहल्ले को गलियों को छोड़कर, सब दोस्त कह रहे हैं कि यारा चला गया, सब दोस्त कह रहे हैं कि यारा चला गया, हंस हंस के जो लाड बिठाता था हर घड़ी, बहनों पे धूप छांव का वो जाड़ा चला गया, अब वतन में वो आएगा शायद किसी बरस, अब वतन में वो आएगा शायद किसी बरस, यूं लग रहा है सारे का सारा चला गया, यूं लग रहा है सारे का सारा चला गया।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।